नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी के हफलों केंद्र है। आज दिन गुरुवार है, शक संवत 1948, सावन महीने की 28वीं तिथि है, अर्थात अंग्रेजी सन 2026, अगस्त महीने की 20वीं तिथि है। सुबह के 5:58 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की पहली सभा।

0: केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री रक्षा सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा संपन्न कर ली है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदान सूची प्रकाशित की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय ने युवा संगम के 7वें चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। 18 से 30 वर्ष के युवा, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, NSS वॉलंटियर और युवा पेशेवर शामिल हैं, युवा संगम के आधिकारिक पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। राजस्व आसूचना निदेशालय ने लखनऊ में हाथी दांत की कलाकृतियों के गैर कानूनी व्यापार में शामिल एक वन्यजीव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। छापेमारी में जब्त 54 नकाशीदार चीजें, जिसमें बैल, हाथी जैसे जानवरों की मूर्तियां शामिल हैं, गिरफ्तार 4 लोगों को आगे की जांच के लिए उत्तर प्रदेश वन विभाग को सौंप दिया गया है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद, BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिन चलने वाले इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता थीम पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को की गोस्तनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। और अब खेल खबरें। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडेम में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। इसके अलावा श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को भी 165 रन से मात दी है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में देर रात बारिश हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आपको आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा के बारे में जानकारियां दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद इनके सुबह के 6:10 का समय रहेगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम का। 6:30 सुने महिला से संबंधित कार्यक्रम। सुबह 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार।

सुबह 7:05 का समय रहेगा आज का दिन का। 7:30 बजे सुनिए विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम। सुबह 8 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे समाचार प्रभात।

8:15 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम का। 8:30 बजे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार। 8:40 पर सुने आपसे बी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरों की रंगोली।

सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे पूर्व आंचलिक बातरी। श्रोताओं स्थानीय गीतों के कार्यक्रम का रूपरेखा इस तरह से, सुबह 9:15 पर सुने खेलमा कार्यक्रम। आज आप सुन पाएंगे कुछ खेलमा भक्ति गीत, गायक होंगे रिचर्ड एल लुसाई और उनके साथी को आवाज में। रंगखोल कार्यक्रम का समय रहेगा 9:25 पर। आज आप सुने कुछ रंगखोल आधुनिक गीत, गायक कलाकार होंगे हेथोई श्याक रंगखोल और उनके साथियों के आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम सुनिए 9:35 पर। आज आप सुन पाएंगे रिगालसन लकियांग और उनके साथी को आज में कुछ जयंतिया भक्ति गीत। और बेती गीतों का कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:45 पर। आज आप सुन पाएंगे कुछ बेते पारंपरिक गीत, गायक कलाकार होंगे चौंगथिली थियाटे और उनके साथियों की आवाज़ में।

सुबह 10 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दिन के 12 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 12:05 का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। 1 बजे दिल्ली केंद्र से सुने हिंदी में समाचार। 1:05 का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। दोपहर के 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में मिड डे न्यूज और 2:55 पर सुने हिंदी में दोपहर समाचार। 2:30 बजे सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम के 4 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार और 4:05 का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का। तो श्रोताओं, ये थे आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा से जुड़ी जानकारियां।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं वोमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग कार्यक्रम।

0: अच्छा।
1: श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग कार्यक्रम यही समाप्त होती है। यही आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आज सिंगापुर में होगा। सम्मेलन के इस चौथे संस्करण में भारत की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुंचने पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक, ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता मेक इन इंडिया ढांचे के अंतर्गत समुद्री सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने तथा रक्षा उपकरणों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। दिल्ली में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के अंतर्गत आवेदन जमा करने की समय सीमा 24 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। आपत्तियों के समाधान की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी और 4 नवंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में होगा। इसमें सत्ताधारी दल के सांसद BNP नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच मुकाबला होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय इस महोत्सव में भारत और रूस के लोगों को आपसी संस्कृति और परंपराओं को देखने का अवसर मिलेगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की मित्रता विषय पर आयोजित ये फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी दौर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कल देर रात बारिश हुई। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला आज चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग

चिट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया है। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल किए, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत को मजबूत बढ़त दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। प्रस्तुत है आज के दिन। श्रोताओ, आज के दिन कार्यक्रम के तहत आइए सबसे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
1: माय नेम इज निकिपया मसा, आई रीड इन क्लास 10। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन बरी इज फिट इन शेडो। The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with excursion, long rain boats shuffling under the roof, like newly discharged patients, half-dazed moving to the clinic doors. I sit inside doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. My head is full of whisper, wish tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, in two pieces flesh now in the crown of the tallest oak.
0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे पोएम ऑफ द डे, प्रस्तुत की थी निकिपया मसा ने। श्रोताओ, हमारे इतिहास में आज के दिन यानी कि 20 अगस्त का बहुत सी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं हुई है जो भारत और विश्व के इतिहास में अहम स्थान रखती है। भारत और विश्व में 20 अगस्त का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इस घटनाओं में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी होगी जिन्होंने अपने वर्तमान समय और भविष्य को काफ़ी प्रभावित किया होगा। आइए जाने देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी कि 20 अगस्त का क्या क्या खास घटनाएं हुई थी। श्रोताओ, सबसे पहले जानकारियां बांटते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से। पूर्वी एशिया में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज 1597 में वापस आया था। राजा राममोहन राय के ब्रह्म समाज के पहले सत्र का आयोजन 1828 में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। 1897 में रोनाल्ड ग्रस ने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान मलेरिया का कारक एनोफिलिस मच्छर की पहचान की थी। फ्रांस के एडोल्फ ने 1913 में पेगोड़ पैराशूट के जरिए विमान से उतरने वाले पहले पायलट बने थे। 1921 में केरल के मलावार क्षेत्र में मोपला विद्रोह की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने 1979 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। भारत और नेपाल में 1988 को 6.15 की तीव्रता वाले भूकंप में 1000 लोगों की मौत हुई थी। वर्ष 1995 में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के आमने सामने की टक्कर में 350 लोग की मौत हुई थी। लैंडर पेस ने 1998 में पीट संप्रास को हराकर पायलट पेन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता जीता था। वर्ष 2001 में स्पेन में भारतीय चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने स्पेन के अलेक्सेई सिशोप को शिकस्त देकर विलारोडेस शतरंज चैंपियन

लीडरशिप का खिताब जीता था। फोर्ब्स पत्रिका में 2004 में विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में सूची जारी की, उनमें अमेरिका की कोंडोलिजा राइस, चीन की वी ची तथा भारत के सोनिया गांधी क्रमश प्रथम तीन स्थानों पर रहा था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध कलाकार अरुणा साई राम को 2008 में अमेरिका में विशिष्ट सम्मान से नवाजा गया था। और रसायन और उर्वरक मंत्री रामविलास पासवान ने 2008 में खाद्य उद्योग के चालू वित्त वर्ष में 22,000 करोड़ का अतिरिक्त सब्सिडी देने का घोषणा की थी। तो ये थे कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी जानकारियाँ। आइए जानकारी बांटते हैं आज के दिन जन्मे तथा निधन हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 1685 में मुगल वंश के फरूक सियर का जन्म हुआ था। कर्नाटक के 8वें मुख्यमंत्री डी देवराज अर्स का जन्म 1915 में हुआ था। 1917 में प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री का जन्म हुआ था। वर्ष 1940 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध प्रावीण्य विश राजेंद्र कुमार पचौरी का जन्म हुआ था। 1944 में भारत के 9वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था। इंफोसिस कंपनी के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति का जन्म 1946 में हुआ था। और 1986 में भारत के महिला शतरंज खिलाड़ी तानिया सचदेव का जन्म हुआ था। उड़ीसा भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार गोपीनाथ मोहंती का निधन 1991 में हुआ था। वर्ष 2004 में इतिहासकार गंगाराम सम्राट का निधन हुआ था। 2011 में प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद राम शरण शर्मा का निधन हुआ था। और वर्ष 2014 में प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु बीकेएस आयंगर का निधन हुआ था। श्रोताओ, आज राजीव गांधी के जन्म जयंती के उत्सव पर सद्भावना दिवस के नाम से भी जाना जाता है और खुर्दाल साल इनकी जरूस्ट जयंती है जो पारसी लोग मनाते हैं। आइए इनसे जुड़ी जानकारियां बांटते हैं। खुर्दाल साल जरथुस्ट की जयंती या जन्मतिथि, जिसे दुनिया भर के पारसी लोग मानते हैं, जिसमें विद्वान पारसी पंचांग में फरवरी दिन का खुर्दार दिवस को इस अवधि के रूप में संदर्भित करते हैं। उत्सव के दौरान पार्टियां और गंबर आयोजित किए जाते हैं। पूरे दिन विशेष प्रार्थनाएं और जश्न भी आयोजित किए जाते हैं। खुर्दार साल पर पारसी घरों की अच्छी तरह से सफाई की जाती है और उन्हें उत्सव की सजावट से सजाया जाता है। और इस खुशी के अवसर को मनाने के लिए विस्तृत पारंपरिक भोजन तैयार किए जाते हैं। इस अवसर को मनाने के लिए एक भव्य भोज तैयार किया जाता है। पारसी धर्म की कथा के अनुसार अहुरा मजदा के दिव्य रूप को प्रेरित पैगंबर जराथुस्ट ने मानवता का आशा का ज्ञान दिया, जिससे नैतिक और आध्यात्मिक नव परिवर्तन का आरंभ हुआ। जराथुस्ट का जन्म, जिसे यहाँ खुर्दार साल के रूप में मनाया जाता है, न केवल पारसी धर्म के नींव रखने वाले एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में, बल्कि मानवीय रूप में दिव्य ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय उद्देश्यों को पूरा करता है और बुराई के विरुद्ध अच्छाई के निरंतर संघर्ष को आगे बढ़ाता है। पारसी मानते हैं कि जराथुस्ट की शिक्षाएं अनुयायियों की धार्मिकता की ओर मार्गदर्शन करती रहती है और उनके जन्म का उत्सव प्रार्थना, चिंतन और धार्मिक सामूहिक कार्यों के माध्यम से इन आदेशों के प्रति भक्ति की पुष्टि कराता है। खुर्दार साल का उत्सव सिद्धांत रूप से न केवल एक उत्सव का अवसर है, बल्कि नैतिक प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करने और व्यक्तिगत जीवन के दिव्य व्यवस्था के साथ संघर्षित करने का

एक पवित्र अवसर भी कहा जाता है। श्रोताओं, आइए अब जानकारी बांटते हैं राजीव गांधी जन्म जयंती से। 40 वर्ष की उम्र में ही प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और संभवतः दुनिया के उन युवा राजनेताओं में से एक है जिन्होंने सरकार का नेतृत्व किया है। उनकी माँ श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वो उनसे उम्र में 8 साल की बड़ी थी। उनके महान नानाजी पंडित जवाहरलाल नेहरू 98 वर्ष के थे जब उन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल की लंबी पारी शुरू की थी। देश में पीढ़ीगत बदलाव के अग्रदूत श्री गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी माँ के शोक से उबरने के बाद उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव करने का आदेश दिया। उस चुनाव में कांग्रेस के पिछले 7 चुनाव की तुलना में लोकप्रिय वोट अधिक अनुपात में मिले और पार्टी ने 508 में से रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल की थी। 700 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में इस तरह की शानदार शुरुआत किसी भी परिस्थितियों में उल्लेखनीय मानी जाती है। ये इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि वे राजनीति परिवार से संबंधित थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था और उनके दादा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उसके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके माता पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं जिन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में भी ख्याति अर्जित की थी। राजीव गांधी ने अपना बचपन अपने दादा के साथ 3 मूर्ति हाउस में बिताया था जहां इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के परिचारिका के रूप में कार्य किया था। वे कुछ समय के लिए देहरादून के वेलहम स्कूल गए लेकिन जल्द ही उन्हें हिमालय के तलहटी में स्थित आवासीय टून स्कूल में भेज दिया गया। वहां उनके कई मित्र बने जिसके साथ उनकी आजीवन दोस्ती बनी रही। बाद में उन्हें छोटे भाई संजय गांधी को भी इसी स्कूल में भेजा गया जहां दोनों साथ रहे। स्कूल से निकलने के बाद श्री गांधी कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज गए लेकिन जल्द ही वे वहां से हटकर लंदन के एम्पीरियल कॉलेज चले गए। उन्होंने वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये तो स्पष्ट था कि राजनीति में उनका करियर बनाने के उनकी कोई रुचि नहीं थी। उनके सहपाठियों के अनुसार उनके पास दर्शन, राजनीति और इतिहास से संबंधित पुस्तकों से न होकर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की कई पुस्तकें हुआ करती थी। हालांकि संगीत में उनके बहुत रुचि थी। उन्होंने पश्चिमी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय एवं आधुनिक संगीत पसंद था। कैम्ब्रिज में उनकी मुलाकात इतावली सोनिया मेनो से हुई और उस समय वो अंग्रेज की पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने 1968 में नई दिल्ली में शादी कर ली और अपने दोनों बच्चे के राहुल और प्रियंका के साथ नई दिल्ली के श्रीमती इंदिरा गांधी निवास पर रहे। नवंबर 1982 में जब भारत के एशियाई खेलों की मेजबानी की थी तो स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी वर्ष पहले किए गए वादे को पूरा किया गया था। श्री गांधी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि सारे काम समय पर पूर्ण होकर एक सुनिश्चित किया जा सके कि बिना किसी रुकावट के एवं खामियों के खेल के आयोजन किया जा सके। श्री गांधी के ज्यादा दुखद एवं कष्टदार परिस्थिति में कई सत्ता में क्या आ सकता है जब 31 अक्टूबर 1984 को अपनी माँ के क्रूर हत्या के बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतने दुखी होने के बावजूद उन्होंने संतुलित मर्यादा एवं संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेदारी को अच्छे तरह निर्वाह किया था। तो श्रोताओ, ये थे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए आनंद लेते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: श्रोताओ आइए सुनते हैं विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज जानकारी बांटेंगे जीवों का विकास के बारे में। श्रोताओ पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव है जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवांश से ही उनके होने का पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा, पूरे विश्व में ही नहीं हमारे देश में भी कई कई जगह में इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में नर्मदा घाटी के कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हम पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 6 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई दो पैरों पर चलने वाले तो कोई चार पैरों पर और कई उड़ने वाले भी थे। समय और उसमें पहले कोई प्रकार के पौधे पाए जाते थे जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तेलचट्टा यानी कॉकरोच भी थे। आज के पक्षियों को तो डायनासोर्स का छोटा रूप ही माना जा सकता है। डायनासोर्स के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीवों की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों को कुछ प्रजाति पाए जाते हैं परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते हैं। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी जो डायनासोर के युग में नहीं थे। गिंको नामक एक पेड़ डायनासोर के युग का है और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था। जरा सोचिए ऐसा कुछ हुआ होगा, कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा। जाना जाता है कि किसी भी जीवों के आवास में उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती है, अर्थात भोजन, प्रजनन एवं सुरक्षा। आवास के प्राप्त संसाधन का उपस्थिति होने से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हम ये भी देखते हैं कि कुछ प्रजाति की संख्या बहुत बढ़ रही है तो कुछ की तेजी से घट रही है। हमारे देश में बाघों की संख्या भी इतनी कम हो चुकी है कि बाघों का प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे ही बाज, सोनचिरैया तथा कई अन्य जीवों का साथ भी है। ठीक इसके विपरीत मनुष्य की संख्या इतनी ज्यादा है कि मनुष्य के आवास के संसार

साधन की कमी होने लगी है। क्या मनुष्य की बढ़ती आबादी का बाघों का संख्या पर कोई असर पड़ रहा है? यदि किसी जीव की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है तो क्या होगा? इस प्रकार जीवों का आवास एवं संसाधन उनकी उत्पत्ति विलुप्त या बदलाव का एक कारण हो सकता है और अजैविक दोनों घटकों भी उतनी ही तेजी से बढ़ते होंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि जनसंख्या में यदि अनियंत्रित रूप से बढ़ोतरी होती है तो खाद्य संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे। ऐसे स्थिति में प्राकृतिक आपदा, परस्पर द्वंद और लड़ाई से कुछ जीव मर जाएंगे जबकि कुछ बच जाएंगे। इस तरह से जीवों की संख्या में वृद्धि नियंत्रित रहती है। क्या जो जीव बच जाते हैं उनमें कुछ विशेषताएं होती है? क्या जीवों पर प्रकृति का कोई प्रभाव पड़ता है? क्या डायनासोर्स की विलुप्ति के पीछे भी ऐसा ही कोई कारण रहा होगा? कई वैज्ञानिक इसी दिशा में सोच रहे हैं कि साथ ही उसके आगे कई सवाल थे, जैसे प्रकृति के जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या सभी जीव पृथ्वी पर उनके प्राप्त या वर्तमान रूप में भी ही कहीं से डाल दिए गए हैं, या प्रकृति में जो जीव बच जाते हैं उनमें बदलाव आता है या वे विलुप्त हो जाते हैं। जैसा हमने पिछली बार पाया है कि कोशिकाएं को पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है और इन्हीं कोशिकाओं से बहु कोशिकाएं जीव बनते हैं। उसी समय के कुछ उल्लेखनीय वैज्ञानिकों को चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वेसल थे, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति के बारे में अपने व्यापक अध्ययन के आधार पर सिद्धांत दिए थे। बचपन से ही डार्विन प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने लगे रहते थे। उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व जीवों की विविधता एवं उस पर प्रकृति के प्रभाव से संबंधित जो अध्ययन किए, उससे वैज्ञानिक तथा सामाजिक सोच की व्यापक परिवर्तन आया है। बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन इस प्रकार से हैं। उन्होंने जीवों का विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने का मदद मिली है। सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमूने के अध्ययन किया, जो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीव दिखे और वे चकित रह गए। यहाँ पर उन्हें खाने और खाए जाने वाले अद्भुत खाद्य श्रृंखला नजर आई। ऐसा ही उन्हें दक्षिण अमेरिकी जंगलों और पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों के बीच में दिखाई दिया। उनके मन में आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, जो बच सकता है वही बच रहा है। शायद भौगोलिक जरूरत के अनुसार जो कुछ ढल गया वही जीव बच गया। उष्णकटिबंधीय जंगलों में कई विशेष प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों में के ऊपर उन्हें ऐसी चट्टानों मिली जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले, साथ ही उन्हें ऐसे भूकंप और का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो गई थी। इसी प्रकार का अवलोकन यहां दर्शा रहा है कि समय के साथ साथ महाद्वीप और महासागर के व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। रेतीले समुद्र के किनारे के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्र किनारों के अवलोकन से डार्विन ये अनुमान लगा पाया है कि निरंतर चलने वाली प्रतिक्रियाओं से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है।

विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों सरीसृपों इत्यादि में जीवाश्म से उन्हें पता चला है कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी है, अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। 1938 में अफ्रीकी तट के किनारे जब मछुआरों ने एक मछली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया, क्योंकि तब तक ये मान्यता था कि डायनासोर के साथ ही ये विलुप्त हो गई है। इसे सिलकेंथ नाम दिया गया। इसमें कुछ विशेषताएं उभयचरों की थी और कुछ मछलियों की। उस समय ये माना गया कि इसका विकास रुक गया है, अतः इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। परंतु अब हम जान गए कि इसमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है, इसलिए इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं होगा। दक्षिण अमेरिका के इक्वेडोर नामक देश के पास स्थित गलापागोस टापुओं पर जब बीगल पहुंचा तो डार्विन का व्यापक अध्ययन करने का मौका मिला। टापुओं में इस समूह के कई छोटे छोटे टापू भी है जो ज्वालामुखी लावा से बने हैं। गलापागोस के टापुओं के कैक्टस तथा अन्य पौधे, चिपकली पक्षी, कछुए, यर्मी इनकी आम्रडिल्लो आदि का डार्विन का अध्ययन किया। बीगल का सफर आगे बढ़ा तब उन्हें और कुछ प्रकार के की भी भू आकृति, विविध प्रकार के जीव एवं उनके आवास के बारे में अध्ययन करने का मौका मिला। गलापागोस का में डार्विन के तथ्य के रूप में कई प्रकार के जीवाश्म मिले। यहाँ के वर्मी का जीवाश्म ये दर्शा रहा है कि पूर्व के वर्मी काफी बड़े थे, जबकि उस समय डार्विन ने जिस वर्मियों का अध्ययन किया वे आकार में छोटे थे। उसके मन में ये बात आई कि समय के साथ साथ वर्मियों का भी बदलाव आया है। डार्विन ने कई अन्य जीवों का भी जीवाश्म जैसे पौधे सरीसृपों स्तनधारियों के अध्ययन से बताया है कि जीवाश्म पूर्व तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों का आपसी संबंध दर्शाने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। गलापागोस के फिंच जाति के पक्षियों का अध्ययन करते समय डार्विन कुछ और तत्वों के बारे में भी विचार करने लगे। फिंच हमारे देश के गोरैया जाति से मिलते जुलते है। गलापागोस के डार्विन से लगभग 15 अलग अलग तरह के फिंच का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि वैसे तो सारे फिंच एक जैसे हैं, मगर अलग अलग टापुओं में मिलने वाले फिंच थोड़े अलग थे, खासकर इसकी चोंच और पंख के रंग में बहुत अंतर नजर आया है। तो श्रोताओ, ये थे विज्ञान से जुड़े कुछ जानकारियां। आइए आनंद लेते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का।

श्रोताओ, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यही आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। थोड़ी देर में सुनते हैं हिंदी में समाचार प्रभात।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा, ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
3: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
3: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्ट्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम

0: 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो गोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टर्डम में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार प्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: श्रोताओ आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार।
1: दिस इज आकाशवाणी शिलोंग द नॉर्थ ईस्ट न्यूज बुलेटिन रेड बाय

0: श्रोताओ, अभी आप अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: हेलो हाफलॉन्ग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

श्रोताओं, समय हो चला है शुरू के रंगोली कार्यक्रम का। आज के शुरू के रंगोली कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आप सभी का पसंदीदा संगीतकार और गायक कलाकार ए ए रहमान के गाए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को देर न करते हुए आइए अब सुनते हैं शुरू के रंगोली कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र से शुरू कर रंगोली कार्यक्रम। आज सुन रहे हैं जाने माने गायक कलाकार ए रहमान के गाए कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमे। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं और कुछ नगमे।

श्रोताओ, ए आर रहमान के गाए इसी गीत के साथ ही शुरू के रंगोली कार्यक्रम यही समाप्त होती है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आइए सुनते हैं आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पूर्व आंचलिक बातोरी थोड़ी ही देर में।

श्रोताओ, अभी आप असमिया में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए आरंभ करते स्थानीय गीतों कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते खेलमा कार्यक्रम। आज सुनते कुछ खेलमा भक्ति गीत। आवाज है रिचर्ड एलुसाई और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओ, रिचर्ड एलुसाई उनके साथियों की गाए इसी भक्ति गीतों के साथ ही खेलमा गीतों का कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं रंगखोल कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ रंगखोल आधुनिक गीत। आवाज है थोशिया रंगखोल।

श्रोताओं, हैथोई स्याक रांखोल और उनके साथी के गाए इसी आधुनिक गीतों की साथी रांखोल गीतों कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आज आप सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम। आज सुनते हैं कुछ जयंतिया भक्ति गीत। आवाज़ें हैं रिगलसोन लकियांग और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, रिगल्सोन लेकियांग और उनके साथियों के गाए इसी भक्ति गीतों की साथी जयंती गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते बेते कार्यक्रम। आज सुनते कुछ बेते पारंपरिक गीत। आवाज है चौंगथिली थियाटे और उनके साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, इसी पारंपरिक गीतों के साथ ही बीते गीतों कार्यक्रम यही समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हमको ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं वीर भारती के कार्यक्रम।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं

0: रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से। और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे।
0: जी
1: डायरेक्टर, हाँ,
0: जी
1: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने
0: जी
1: तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं
0: जी
1: और अलग अलग विषय पे जो की हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
0: जी
1: मैं उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ,
0: जी
1: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है,
0: जी
1: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूँ।
0: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
1: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है। व्हेन आई वाज इन कश्मीर,
0: जी
1: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ,
0: जी
1: पंकज रैना। रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं।
0: जी
1: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
0: अच्छा
1: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है,
0: जी
1: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
0: जी
1: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी। तो
0: जी
1: उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे। पिताजी
0: अच्छा
1: वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका,
0: क्या बात है
1: उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे, तो
0: अच्छा
1: हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह का कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गज़ल सिखाई थी इसकी, फैज़ अहमद फैज़ की। तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहाँ से
0: आपको
1: मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था
0: जी
1: 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहाँ से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
0: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको फैज़ अहमद फैज़ की एक गज़ल गाने पर फर्स्ट प्राइज़ मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गज़ल हम भी सुने जिस पे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है। तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से
1: वो तो
0: तो
1: मेरे, लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
0: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
1: दोनों जहान तेरी

0: गुजार
1: क्या बात है।
0: के दोनों जहान तेरी।
1: आ खूबसूरत आवाज है। इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या
0: टेलीविजन पे और रेडियो पे। फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
1: जी
0: 1972 में, तो मैं वहाँ जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
1: जी
0: तो मैंने वो बच्चों की आवाज़ में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने
1: आहा
0: कहा था मैं भी गाऊँ, जिद की मैंने।
1: जी जी
0: और चारों तरफ लोग खड़े थे, बहुत पुरानी बात है, इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
1: हाँ
0: बात कर रहा हूँ मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज़ एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज़ थी, ऐ मेरे
1: हाँ
0: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहाँ से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
1: जी
0: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
1: जी
0: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
1: जी
0: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
1: जी
0: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है। हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है, लेकिन इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया, तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी, नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कश्मीर
1: कश्मीर का
0: का
1: है।
0: रहने
1: जी
0: वाला है,
1: जी
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है,
1: जी
0: या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल, एक जनरलाइज्ड, एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक, जिसको ही देवनागरी हिंदी में जब बात करें, तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं,
1: जी
0: बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं।
0: शिक्षक रहे
1: और
0: हैं,
1: जी
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल करते
1: धन्यवाद
0: हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल।
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक, मतलब, ये श्रोता हूँ, मैं
1: जी
0: सुनता हूँ। जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: एट जी जी
0: सुनूँ,
1: जी
0: या एक और है 107.,, जो जैसे आकाश
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं,
0: नंबर्स
1: इसलिए
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: देता
0: मुझे
1: है।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं,
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम, मतलब, प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफी चाहता हूँ उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहाँ ना उच्चारण है, ना भाषा है, ना कोई उसका अंदाज है। लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता है।
0: हैं, हम
1: जी
0: हमेशा साथ थे।
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ
0: चलते
1: जाते
0: थे। फिर
1: हैं।
0: मेरे एक ब्रदर हैं चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था, जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे, हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे, जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए। जी
0: लगाने के लिए। और आकाशवाणी का भी, विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था। वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहाँ, उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं, उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखने जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव था हमारा
1: जी।
0: तो हमने वहाँ से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहाँ से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था जे एंड के अकेडमी का, वहाँ जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे छोटे थे तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका, लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था। फिर धीरे धीरे वहाँ थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया,

0: बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या खाता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया?
1: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
0: जी
1: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहाँ पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें, उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया,
0: सिखाया।
1: तो फिर वो शामे गज़ल और आपकी फरमाइश, इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
0: अच्छा
1: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब,
0: जी
1: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, तुम आओ, तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो,
0: जी
1: मैं प्लेज करते रहता हूँ, रेडियो प्लेज
0: हाँ
1: जो
0: हाँ
1: होते थे, तो हमारा हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए, तो फिर हम
0: पास हो
1: उसमें
0: गए
1: प्लेज करते थे,
0: जी
1: तो वहाँ से कुछ न कुछ, शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी
0: हाँ
1: शुरुआत हुई, तो यहाँ से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम, कोई ना
0: जी
1: कुछ, लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं, बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं,
0: जी
1: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे,
0: जी
1: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ, ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे, तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो, फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे,
0: हाँ
1: जाते थे, कभी वो लाते थे, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से
0: जी
1: कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था, एक्चुअली सच बताएं तो मेरे
0: निकल
1: भाग्य
0: पड़े थे,
1: में
0: मतलब
1: ऐसा था कि
0: भाग
1: मैं,
0: पड़े थे या निकल पड़े थे? अच्छा
1: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया,
0: जी
1: तो मैं 1980 में दिल्ली आया, और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था, और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूज़िक भी सीख रहा
0: संगीत भी
1: था,
0: सीखा।
1: और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहाँ हमने म्यूज़िक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था, लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग, मेरे कुछ साथी थे, उनके साथ हम थिएटर वगैरह, प्लेज पढ़ना, प्लेज की
0: जी
1: रीडिंग करना और प्ले करना, तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम,
0: जी
1: बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे, और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा, जब मैं दिल्ली आ गया
0: एटीन
1: था,
0: ट्वेंटी ईयर्स का एज
1: हाँ,
0: होगा, 18-20 साल।
1: 19-20 साल की
0: हाँ
1: उम्र थी,
0: हाँ
1: तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया, तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं
0: जी
1: सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में
0: मतलब
1: पास
0: रेडियो
1: हुआ
0: का साथ छोड़ा
1: रेडियो मेरे
0: नहीं
1: साथ में हमेशा रहा है,
0: जी
1: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना,
0: हाँ
1: तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो
0: और
1: प्रिपेयर भी
0: पढ़ते भी
1: करती
0: रहते
1: रहती
0: थे।
1: थी,
0: जी जी जी
1: मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता
0: जी लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती
1: था
0: हैं
1: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है,
0: जी
1: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडलजेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज़ का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज़ को कैसे इस्तेमाल करना है,
0: जी
1: कुछ वहाँ दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला,
0: जी
1: तो इस तरह की सारी चीज़ें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो।
0: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था, और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला,
1: जी
0: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीज़ें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
1: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई

0: वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो
1: जी
0: या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो,
1: जी
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूँ,
1: जी
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज़्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है
1: जी।
0: कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज़ में बेस कैसे आएगा,
1: हाँ,
0: ऐसा नहीं हो। मुझे कई लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज़ ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज़ कैसी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज़, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज़ वो नेचर से मिलती है। उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज
0: की
1: का रियाज
0: जैसे
1: कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स जो है उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप नीचे की तरफ सा
1: सा के बाद
0: नी हा
1: नी
0: नीचे
1: जी,
0: आए
1: जी।
0: आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना ऊपर छू सकते हैं। हमारे
1: अच्छा
0: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू, आप जब खरज का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरज का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो, कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं,
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरी संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि चूंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने बेसिक म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको, जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते
1: खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी, कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीज़ें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूशन से वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहाँ पहुँच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु के
1: और
0: ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं है,
1: जी
0: और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं, अभी बचपन में नहीं जाते
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें

0: कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
1: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पता
0: जी
1: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
0: नहीं, स्वागत है, स्वीकार है। जी
1: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
0: जी
1: हैज बीन माई फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
0: जी
1: बीच में तो काफ़ी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था। एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
0: जी
1: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार
0: क्या
1: टाइटल
0: बात है।
1: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूँ। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म जी को मैंने डेडिकेट किया, उसमें
0: जी
1: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है, उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
0: जी
1: क्योंकि
0: स्वागत
1: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं दुनिया, ओ दुनिया।
1: कितना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए,

0: बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे,
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में,
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है
0: तो
1: उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहाँ पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहाँ से
1: जी,
0: आपने, तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है,
0: अच्छा।
1: तो ये बात एक तरह से वाजे भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही पड़ा। मुझे बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा, आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष,
0: जी जी
1: अब वो
0: जी
1: है
0: जी
1: नहीं,
0: जी जी
1: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी। तो मैंने उनका पता ढूंढा, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना है।
0: बड़े महंगे हुआ करते थे उस समय।
1: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे
0: जी
1: थे वो,
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: ही अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
0: यस
1: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था, ह्यूज रोड पे, तो वहाँ उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे, वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस ज़माना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स तो दिए थे, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
0: अप्लाई
1: वो
0: कर दिया।
1: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा ज़माना था कि फ़ोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बैंड्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देखिए, हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फ़ोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
0: हाँ
1: मेरी आंटी घर पर रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कुछ
0: भूल
1: मैसेज मिलता नहीं
0: गई, भूल
1: था,
0: गई।
1: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, 3 रोज़ेस चाय,
0: अच्छा
1: आई थिंक दैट वॉज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
0: हाँ
1: उसमें एक मॉडल थी राधा, और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
0: जी
1: बहुत
0: राधा
1: बड़े
0: जी, जी जी
1: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
0: जी
1: ठाकुर।
0: जी
1: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की 3 रोज़ेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई गॉडफादर था नहीं, मुझे कोई लॉन्च करने वाला था नहीं, तो आई हैड टू डू माई ओन थिंग्स। तो आई यूज टू बी इन टच, मैं पृथ्वी थिएटर में अक्सर जाता था, वहाँ लोगों से मिलना होता था, वहाँ बहुत लोग मिलते थे। कुछ मैंने उस पहले आके इप्टा के साथ में भी एक उनके साथ फंक्शन किया था इप्टा डे का, तभी वो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। इकबाल कुरैशी साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे, कुलदीप सिंह जी थे, तो एम एस सत्यू साहब, ये लोग बहुत पुराने इप्टा के
0: बड़े
1: लोग थे।
0: लोग थे जी।
1: तो इन लोगों के साथ में भी इप्टा डे में भी मैंने गाया भी था, एक्टिंग भी किया था। तो इस तरह से मुझे जितने जितने मुझे जो भी मौका मिलता था मैं कर लेता था।
0: जी
1: आई थिंक आई यूज टू, मुझे लगता है अपने आपको मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ,
0: जी
1: शायद रिफाइन कर रहा हूँ। तो इनिशियली वैसे ही काम चलता रहा।
0: जी
1: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
0: जी
1: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
0: जी
1: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है, मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
0: हाँ
1: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको ज़रूरत थी उस वक्त एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
0: जी
1: उसमें किरदार था जीवन का,
0: जी
1: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जी से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहाँ पे वो लिफ्ट है, और वहाँ सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं, उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो

0: करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविज़न नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज़ की कश्ती, तो
1: जी
0: अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने
0: जमाने में,
1: सारे
0: एटीज़।
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना। अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है,
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
0: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना
1: जी,
0: चलाइएगा।
1: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे। आप दो पंक्तियां।
0: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर

0: बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: क्या
0: गया।
1: बात है, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत बहुत खूबसूरती से आपने गाया, और अब सुनते हैं यही गीत।
2: मैं

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि हाँ, हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: हम
1: भी
0: बांट रहे
1: खुशी
0: हैं
1: है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ, जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही,
0: जी
1: और विविध भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी
0: जी
1: हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है, तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप

0: उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज एक्टर काम कर रहे हैं, तो वो जमाना कैसा था? आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए? ये बड़े प्यारे से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं, फिर मुझे वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी उस वक्त, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
0: जी,
1: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
0: टूटा
1: गया
0: होगा।
1: था। तो
0: हाँ,
1: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से। वो उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे। तो वो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे। ए
0: जी
1: कश्मीरी, कम हेयर, कम कम, व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
0: आप
1: करते
0: थोड़ा और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
1: थे
0: समय देव साहब यहाँ पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
1: मैं
0: दे।
1: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
0: जी जी
1: था।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर,
0: जी
1: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटर कुछ में भी था,
0: जी
1: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था।
0: जी
1: उनका आनंद डबिंग भी था,
0: जी
1: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे, बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
0: जी
1: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहाँ मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहाँ गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
0: अच्छा
1: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब इट इज
0: उसी
1: इट इज
0: लूप
1: नॉट,
0: में
1: मुझे
0: फंस
1: मुझे हाँ ऐसा लग रहा था।
0: जाएंगे।
1: उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा, रायना आई एम रोल रियली सॉरी, आई कॉन्ट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल, यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ ए पुलिसमैन। तो
0: जी
1: मैं बहुत उनका फ़ैन था, बहुत ज़बरदस्त फ़ैन रहा हूँ उनकी फ़िल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो
0: जी
1: मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूँगा। इस
0: ओह
1: फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये
0: जी
1: मेरी अब मैं अगर को कहूँ गलतियाँ थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था। मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे नेगेटिव रोल में। नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक
0: जी
1: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
0: जी
1: आवाज़ और मेरी पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
0: कर
1: रोल विल
0: सकते हैं।
1: सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
0: फिर से टूट
1: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
0: गया
1: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
0: जी।
1: देर हैज़ टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा,
0: जी
1: लेकिन किया तो है ना हमारा, मेरा
0: जी
1: ऐसा कोई था नहीं। कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
0: जी
1: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
0: जी
1: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूज़िक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूज़िक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
0: जी
1: मैं शोज़ भी करता रहता था,
0: अच्छा
1: जैसा आपने अंदाज़ा लगा एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
0: जी
1: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
0: सिंगिंग
1: करते
0: दोनों
1: थे, तो ऐसा ही हमारा
0: करते
1: भी कुछ वैसा ही था।
0: थे जी
1: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में कुछ, मैंने वीर ज़ारा, मुझे
0: जी
1: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूज़िक का नॉलेज हो। तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में। तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूज़िक आता है वो ये। तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
0: जी
1: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना सकते हैं
0: थोड़ा सा आप गा के? नहीं, आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंच

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स ले लें, तो इस तरह से अपने ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज़ ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीज़ें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज़ के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज़ का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं, इस सब का निचोड़ एक

0: कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
1: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है इसमें ये तो एक तपस्या की तरह है।
0: जी,
1: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीज़ों का सराह तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे, और उन सब चीज़ों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने अपने आप को उसमें कितना
0: ढाला है,
1: एनग्रॉस किया हुआ है, उसमें ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे, तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
0: अगर वो हारते हैं, टूटते हैं तो क्या करें?
1: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
0: जी,
1: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना।
0: जी,
1: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
0: जी,
1: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं,
0: जी
1: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं,
0: जी
1: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक।
0: जी
1: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्म जन्मों के कर्म होते हैं।
0: जी
1: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही।
0: जी,
1: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना,
0: जी,
1: तो होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
0: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
1: टूटना नहीं होता है,
0: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
1: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था। मैं जब रफ़ी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी, जो तीन बड़े जो स्टॉलवर्ट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे, जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है, उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं। एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12-स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे। और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को। तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है, वो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया। मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से, जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके, भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं।
0: जी,
1: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे,
0: जी,
1: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था।
0: जी,
1: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूँ, तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे मिलने आया हूँ।

0: जी
1: कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया
0: जी
1: हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर, फिर
0: मिलने की
1: ऊपर।
0: चाहत ने मिला
1: नहीं,
0: दिया,
1: मैं मिलने गया ही था उनसे, तो देखा तो
0: पर
1: वो अंदर से
0: लिफ्ट
1: आ,
0: में ही मिल
1: लेकिन वो
0: गए।
1: नीचे ही मिल गए।
0: जी,
1: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए, तो वहाँ पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है वो, ये बातें बातें हुई। फिर उन्होंने गिटार उठा ली, तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने, तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने से भी, उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो महान महान लोगों से मिले भी हैं।
0: जी
1: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
0: जी
1: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो
0: हाँ
1: मैंने पहला गीत यही गाया था,
0: तो
1: जो मैं दो
0: जरा
1: लाइन आपको सुना के।

एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का
1: जी।
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के

0: साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी जी
0: हैं,
1: जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह,
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं यहाँ चला आया, और मुझे अपनी जड़ों से, अपने रूट से, अपने कश्मीर से, अपने दिल्ली की यात्रा से और बम्बई की यात्रा से मुझे कुछ कहने का, साझा करने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत दिल से, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे आज इस जगह पे मुझे बुला के बहुत ही एकदम आत्मविभोर कर दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ।
0: बहुत धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डायरेक्टर, एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: विविध भारती
2: रंग तरंग।
0: रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी और आप सभी को हमारा नमस्कार। सबसे पहले अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संगीत राजू सिंह का, एल्बम तुम आए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जगमोहन सुरसागर की

रंग तिरंग कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अदनान सामी की आवाज में तेरा चेहरा, इस एल्बम का गाना समीर के बोल, संगीत है अदनान सामी का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: पंकज उधास की आवाज, शब्दकार शेवन बिजनोरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम मुस्कान।

0: रंग तरंग।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। लीजिए अब सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। शायर हैं अमीर मिनाई, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम खामोशी।

0: रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गाना समीर के बोल संजीव दर्शन का संगीत एल्बम तलाश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत पोहनकर की आवाज में ये गीत। एल्बम का नाम पिया बावरी, गीत और संगीत अजित अभिजीत पोहनकर का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए गए थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफ्तांग केंद्र है। अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरे कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग

0: आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। सीआईएसएफ ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68,53,000 रुपए बरामद हुए। सीआईएसएफ ने बताया कि यात्रियों नकदी और संबंधित यात्रा दस्तावेजों को कार्रवाई के लिए आयकर अधिकारियों को सौंप दिया गया है। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के भीतर स्थित सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर लंबी दूरी के हमलों को तेज कर दिया है। एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टर्डम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। एंटिका सिंगापुर इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन में मोहित जागलान और लक्षिता जागलान की जोड़ी वॉकओवर मिलने के बाद मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब उनका मुकाबला सिंगापुर की जोड़ी से होगा। इससे पहले भाई बहन की इस भारतीय जोड़ी को पहले दौर में बाई मिली थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें आकाशवाणी के हफ्तलंग केंद्र से सुन रहे हैं। आपके मनोरंजन को जारी रखते हुए पुनः चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से

यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए दिल का हीरा। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले, मोहम्मद रफ़ी और अमित कुमार की आवाज़ें हैं। आनंद बख्शी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

ब्रेक के बाद अब यादों की महफिल कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का गाना येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें, इंदिवर के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। लीजिए अब सुनिए संत ज्ञानेश्वर फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज में, भरत व्यास के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीर जारा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रीता मजुमदार की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत है मदन मोहन का।

0: अरुण में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए गृह प्रवेश, इस फिल्म का गाना भूपिंदर की आवाज, बोल गुलजार के संगीत है कनू रॉय का।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा लो, पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म का ये गाना आपने सुना भूपिंदर सिंह और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, बोल गुलजार के संगीत कनू रॉय का।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: हम पंछी एक डाल के, इस फिल्म का गाना आशा भोसले और साथियों की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना, संगीत एन दत्ता का।

0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल, और अब किनारा फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपेंद्र सिंह की आवाजें, बोल गुलजार के हैं संगीत आरडी बर्मन का।

एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, कण कण में भगवान। इस फिल्म का गाना महेंद्र कपूर की आवाज़, भरत व्यास के बोल और संगीत है शिवराम का।

0: श्रोता आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हफ्तांग केंद्र है। अब प्रस्तुत है हिंदी में समाचार, रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय

0: तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर आप हमें आकाशवाणी के हफ्तंग केंद्र से सुन रहे हैं। जारी है विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: इस गाने में कहने का जो अंदाज़ है वो आपने देखा ही होगा, और बड़ा लुभावना अंदाज़ है कि एक व्यक्ति जो गीत अच्छे से गा नहीं सकता लेकिन उसका दोस्त पीछे से गाता है, और पहला जो दोस्त है वो सिर्फ होठ हिलाता है और इस तरह से बात बन जाती है कहने की। आर डी बर्मन का ये बड़ा ही प्यारा सा संगीत आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब भी हमें लिख करके भेज दिए। एक हमारी साथी लिख रही हैं कि पहले हमारी दादी माँ कहती थी कि तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम वह लिखकर भगवान जी के सामने रख दो चिट्ठी में, भगवान जी तुम्हारे मन की सुन लेंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हम किसी से नहीं कह पाते हैं और मन बड़ा भारी रहता है, तो ऐसा करने से मन भी हल्का हो जाता है और एक मन से सोच भी निकल जाती है। एक हमारी साथी लिख रहे हैं कि कहना यानी शब्दों का सफर, दिल की धड़कन की रवानी, कभी कभी मौज मस्ती प्यार की बोली मस्तानी, तो कभी खामोशी से बोली आंखों की जुबानी, मन की फुसफुसाहट की निशानी, तो कभी बुलंद आवाज में की गई देशभक्ति की वो पुकार रूहानी, मुलायम लफ्जों में सांत्वना देती सहानुभूति की निशानी, तो कभी कभी ओजस्वी विचार जो समाज को दे रोशनी, इस तरह कहते कहते बन जाती है जीवन कहानी बड़ी ही सुहानी। बहुत धन्यवाद आपका इतनी प्यारी बातों के लिए। और जो कुछ आज के हमारे सवाल है कहने पर से, तो पहली बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत अच्छी बातें कही हो और उसने उन बातों को माना भी हो और उन बातों का सामने वाले पर इतना असर हुआ कि उसकी दुनिया ही बदल गई और बाद में उसने आपसे आकर के धन्यवाद कहा कि आपने इतनी अच्छी बातें मुझसे कही थी और उसकी वजह से हमारे जीवन में बहार आई। अगर ऐसी कोई घटना आपको याद आती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बॉबी फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं। इसमें दो आवाज़ें हैं, एक तो लता मंगेशकर की आवाज़ है और दूसरी आवाज़ किसकी है यह आपको बताना है। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया पर फिल्माया गया ये गाना आपको सुनवाते हैं।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम।
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

लता मंगेशकर के साथ जो दूसरी आवाज़ है वो शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है। आपके सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। एक साथी की ये बात है कि आज की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सबको बहुत कुछ कहना है पर सुनने का किसी के पास वक्त नहीं है और धीरज भी नहीं है। एक साथी हमारी लिख रही है कि शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। किसी के बात करने का अंदाज़ इतना मृदुल, इतना मधुर होता है कि लगता है उनका हर शब्द शहद जैसा हो और उनके होठों से शब्द फूलों जैसे झड़ते हैं। मन करता है बस वो कहते ही जाए, कहते ही जाए और हम अपलग से उनको सुनते रहें। वहीं दूसरी तरफ कर्कश व्यक्तित्व वाले व्यक्ति से हर कोई बात करने से कतराता है क्योंकि उनके शब्द तीर की तरह चुभन देने वाले होते हैं। अतः बात करने का तरीका भी एक कला है कि आप किस तरह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं जिससे कि मकसद भी जाहिर

हो जाए और संबंधों पर भी कोई आँच न आए। जी हाँ, कहने की जो मर्यादा होती है या तरीका होता है बहुत मायने रखता है। हमने आपसे पूछा कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आपने बहुत कुछ अच्छी बातें कही हो, उसने आपकी बातें मानी हो और उसके बाद उसका जीवन बदल गया हो और उसने आपको आकर के कहा हो कि बहुत धन्यवाद, आपने हमें मुझे इतनी अच्छी जो बातें कही थी उसे मैंने अपनाया। ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने तो हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिंदगी और ख्वाब, इस फिल्म का गाना, सुमन कल्याणपुर की आवाज़, मीना कुमारी पर फिल्माया गया ये गाना है। गीत और संगीत किसका है आप बताइए हमें।

जिंदगी और ख्वाब फिल्म का ये गाना प्रदीप का लिखा हुआ, दत्ताराम का संगीत। एक हमारे साथी की ये बात कि कहना हमारे हाथों में होता है, पर उन्हीं शब्दों का अर्थ अलग अलग लोग अलग अलग लगा लेते हैं। कहना हमारे हाथ में है, पर उसका सही अर्थ समझना दूसरे के हाथ में है। यही समझ गए तो ठीक, वरना मन मुटाव ही हो जाता है। एक साथी ये भी लिख रही हैं कि कहना तो सबको होता है, पर सुनने वाला कोई प्यारा सा दोस्त हो तो फिर क्या कहना। कहने को बहुत सारी मस्ती हो सकती है, पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा से सब बिगड़ भी जाता है और फिर उदासी आ जाती है हमारे हिस्से में। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि ज़िंदगी में हमेशा बड़े काम ही याद नहीं रहते, कभी कभी किसी के कहे गए दो शब्द भी उम्र भर साथ रहते हैं। इसलिए जहाँ मौका मिले किसी का हौसला बढ़ाइए, किसी की बात सुन लीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दीजिए। क्या पता आपकी यही छोटी सी अच्छाई किसी के मुश्किल दिन में थोड़ी सी रोशनी बन जाए। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए कि कभी कोई मुश्किल में है तो हमारे हौसले से भरे हुए दो शब्द, प्यार के दो शब्द

उसके लिए मरहम की तरह काम करते हैं और उसका जीवन संवर जाता है। तो ऐसा भी होता है। हमने आपसे पूछा कि ऐसा कोई उदाहरण हो तो आप हमें बताइए, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपने नहीं लिखा है। चलिए हम आपसे एक अगली बात ये पूछते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत साफ दिल से कोई बात कही हो लेकिन उसे वो बात चुभ गई हो, या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बात कही हो और उस बात ने सामने वाले व्यक्ति को इतनी खुशी दे डाली कि उसका जीवन ही बदल गया? ऐसी कोई बात हो तो आप हमें बताइए। चलिए अगला गाना अब आपको हम सुनवा रहे हैं। ये गाना है मुकेश और आशा भोंसले की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी का संगीत है। आपको बताना है फिल्म का नाम। जी हाँ, कौन सी फिल्म का ये गाना है ये बताइए।

ये जिस फिल्म का गाना है उस फिल्म का नाम है कुंवारी, और 1966 की यानी कि 1966 की ये फिल्म है। कुछ श्रोताओं ने इस बारे में सही जवाब हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि यूं तो अपनी बात सभी कह देते हैं, पर दूसरे की गलती पर या सच बात को मौके पर और किसी के मुंह पर कहना हर एक के बस की बात नहीं होती। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कहना जितना सहज है उतना ही उत्तरदायित्वपूर्ण भी। सुकरात ने कहा था कि बोलिए ताकि मैं आपको देख सकूं। कथन की सत्यता, स्पष्टता और मिठास ही किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सच्चा परिचय देती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कहना भी एक कला है और चुप रहना भी। कुछ बातें शब्दों की मोहताज नहीं होती, आंखें

देती है, खामोशी समझ लेती है और कभी कोई फूल या चांद हमारी तरफ से वो बात कह जाता है जिसे हम कह नहीं पाते। मगर रिश्तों में शब्दों की अपनी एक जिम्मेदारी होती है। होठों से निकला हर लफ्ज़ सामने वाले के मन में कहीं ठहर जाता है। रिश्तों की गरिमा और मिठास बनाए रखने के लिए हर बात कह देना ज़रूरी नहीं, कुछ जज्बातों को दिल की तहों में महफूज रख देना ही ठीक होता है। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शाम तेरे कितने नाम, इस फिल्म का गाना हेमलता की आवाज़ है, अनजान के बोल रविंद्र जैन का संगीत। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आपको बताना है।

सचिन और सारिका पर फिल्माया गया ये गाना आज तक जो कहा तुमने कहा। जी हाँ, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं या हमारे आसपास होते हैं या हमारे दोस्तों में या ऑफिस में या घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जब तक कहते हैं हम सुनते हैं, लेकिन जब हम अपनी कोई बात कहने जाते हैं तो वो तुरंत ही उस बात को वहीं पर समाप्त कर देते हैं, काट देते हैं और अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में भी या

तो ऐसे लोगों के बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि कहने की बात यह है कि मंजू जी आज कुछ कम सुने सुंदर नायाब गीत आप सुनवा रहे हैं, तो ये भी हमें अच्छा लग रहा है। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कुछ कहना है कि जब मेरे पतिदेव इस दुनिया में नहीं रहे तब मेरे पापा ने एक बात कही थी और आज तक मुझे याद है। पापा ने कहा, बेटा जब तक तुम सच को स्वीकार नहीं करोगी, भ्रम में रहोगी और पीछे मुड़कर देखोगी तो आगे कैसे बढ़ोगी। आगे देखो, वो बात आज तक याद है और यही बात मैं अपने जैसी जो भी मेरी दोस्त है जिन हालातों से वो गुजर रही हैं उन्हें मैं ये बात कहती हूँ या सलाह देती हूँ। धन्यवाद आपका। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि ये रचना यानी कि इस टेक्स्ट के बारे में इन्होंने लिखा है कि ये संदेश देती कि जब जुबान पर लगाम और दिल में रिश्तों के लिए सम्मान हो तो खामोशी भी कड़वे शब्दों से ज़्यादा असरदार और गरिमामयी होती है। बोलने की आज़ादी के साथ एक सीमा भी जुड़ी होती है। कहे गए शब्द कभी वापस नहीं लौटते, इसलिए भाषा में सद्भावना और संतुलन होना ज़रूरी है। धन्यवाद आपका। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। रखवाला फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है या आप बताइए।

का गाना आपने सुना, धर्मेंद्र और लीना चंदावरकर पर फिल्माया गया ये गाना। एक साथी की ये बात के कहने में तो सिर्फ 3 शब्द समाए हैं, मगर अक्सर लोग नहीं जानते जो कुछ भी हम कहते हैं वो हमारे प्रतिबिंब बन जाते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो भी कहो सोच समझ कर कहो, क्योंकि एक बार मुँह से निकले लफ्ज फिर वापस नहीं आते। कोशिश करें कि हम हमेशा कहने में सुंदर कहें और सुनने में धीरज बरतें, क्योंकि आपके कहे कटु शब्द में दांत तो नहीं होते, पर वे शब्द काट लें तो उनके जख्म कभी नहीं भरते। कहने में बड़ी शक्ति है, हाँ शब्दों के चयन ही आपकी असल पहचान होते हैं। धन्यवाद आपका। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मिली फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़। मिली फिल्म का गाना है ये, लता मंगेशकर की आवाज़ है, एस डी बर्मन का संगीत है। गीत किसने लिखा है ये आप बताइए।

योगेश का लिखा हुआ ये गाना जो अभी आपने सुना। एक साथी लिख रहे हैं कि जी हाँ, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी बात सुनाने में सदा उत्सुक रहते हैं, मगर सामने वाले की बात सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रखते। बात पूरी भी नहीं होने देते और अपनी बात सुनाना शुरू कर देते हैं। कई बार तो ये कहना पड़ता है कि प्लीज़ सुनिए, पहले हमारी बात सुन लीजिए, ऐसा कहना पड़ता है। एक साथी ये भी लिखते हैं कि कौन सुनेगा, किससे कहें हम, इसलिए चुप रहते हैं। जी हाँ, सही बात है कि जब तक कोई सुनने वाला ना हो तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। अक्सर लोग ऐसा ही सोच लिया करते हैं और सवाल भी बहुत उम्दा है, लेकिन सांसारिक झंझावातों में उलझा मन ये समझ ही नहीं पाता कि ये संसार तो एक दिखावा है और असली कहने की नहीं अपितु सुनने वाला कोई और नहीं अपितु स्वयं हमारे ही अंदर है और उसे हमें पहचानना है। धन्यवाद आपका। चलिए, भरत मिलाप इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ें, भरत व्यास के बोल, संगीत वसंत देसाई का।

भरत मिलाप फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रही हैं कि सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, कहते हैं इसी जीभ से विष और रस दोनों निकलते हैं, लेकिन चुनना तो हमारा स्वभाव है, कही हुई बात कभी वापस नहीं आती, इसलिए सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते, एक झिझक सी होती है और कह नहीं पाते कि क्या सोचेंगे, दिल की बात दिल में ही रह जाती है, मन में कई विचार उठते हैं, कभी कभी मुंह से निकली हुई बात दूसरों पर बुरा असर डाल सकती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो समय पर बोल देना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि जो लोग ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं उनको अक्सर याद नहीं रहता कि उन्होंने पिछली बार कौन सी बात कही थी और कौन सी नहीं, वो याद रखने के मामले में असफल होते हैं, कारण कि वो धैर्य से कभी कोई बात ना सुनते हैं और ना कहने के मामले में भी वो अधीर ही नजर आते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अदालत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, ये खूबसूरत सा संगीत किसका है और कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये आप

मदन मोहन का संगीतबद्ध किया और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना आपने सुना। और एक साथी की ये बात कि जब दिल में जज्बात बहुत गहरे हों और अपनों से बात ना हो पाए तो खामोशियां भी एक भाषा बन जाती है। ये एहसास बहुत खूबसूरत और थोड़ा दर्द भरा होता है, जहां उम्मीद और तन्हाई साथ साथ चलती है। दिल की बातें और उम्मीद चांद तारों का सहारा होता है। जब कोई अपना दूर होता है तो आसमान और कुदरत ही हमारे हमराज बनते हैं और अनकहे जज्बात कुछ बातें जुबान पर आने से पहले ही आंखों और दिल में बस जाती है। ये उम्मीद होती है कि जो दिल को संभाले

आज के सुरीला सफर कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना, ये गाना हम आपको पूरा तो नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन जितना जो हम सुनवा पाएंगे वो आपको ज़रूर सुनवाएंगे, एक छोटी सी बात के साथ कि हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि खुशियाँ बांटने के लिए हमेशा बहुत कुछ नहीं चाहिए, कभी कभी एक अच्छा शब्द ही काफ़ी होता है। चलिए, चाचा भतीजा फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है बताइए।

रणधीर कपूर और योगिता बाली पर फिल्माया गया ये गाना यही था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना। अब इजाजत दीजिए आप सभी को, मंजू द्विवेदी का नमस्कार।

0: will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wagener Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defence partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Teresa Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
2: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।

0: बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्रविरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबी

0: या लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
2: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
3: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट

0: जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले दो दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार, लेके गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। दोस्तों, आपके मनोरंजन को जारी रखते हुए आइए पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम, रिले किए जा रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
2: कसक उठी मन में

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करेक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गाना आपको सुनवाते हैं, ये दिल किसको दूं। इस फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ आ।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत रवि का।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में लीजिए अब सुनिए प्यार का बंधन, इस फिल्म का गाना। कमर जलालाबादी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना मुझे जीने दो इस फिल्म से है। आशा भोसले की आवाज, सही लुधियानवी के बोल, संगीत है जयदेव का।
1: नदी नारे

0: सवतिया हाय संग सवतिया न लाओ शाम पैया करूं संग सवतिया न लाओ।
1: लीजिए अब सुनिए राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। फिल्म का नाम शराबी।

0: कहाँ के
1: हम चांद आत्मा के
0: हाय हाय गुरूद इतना
1: गुरूद इतना
0: उफ ये अदा है ये नशा।

0: हाय ये पकड़, हाय हाय हाय, तुम हो हसी कहाँ के,
1: हम चांद आत्मा के,
0: हाय हाय गुरूर इत...

0: कन्हैया।
1: आज की सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना रुस्तम सोहराब। इस फिल्म का गाना सुरैया की आवाज, कंवर जलालाबादी के बोल, संगीत है सज्जाद हुसैन का। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ पलों का इंतजार कीजिए।

0: सखी सहेली
1: हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम सखी सहेली लेकर हम आ चुके हैं और आज मेरे साथ हैं इस मंच पर आरती श्रीवास्तव। आपको भी नमस्कार आरती।
2: चंचल जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो नमस्कार के बाद हम बताते हैं कि आज हम क्या बातें करने वाले हैं, मतलब किन विषयों पर बात करें।
2: तो आज हम लेकर आए हैं विषय विलुप्ति की ओर भाषाएं और बोलियां। जो भाषाएं कहते हैं ना, हमारा देश जो है वो विविधता से भरा हुआ है।
1: हाँ।
2: तो इसमें बहुत ही अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनमें से कुछ भाषाएं ऐसी हैं जो अब विलुप्ति की कगार पर आ गई हैं।
1: बिल्कुल।
2: तो
1: उनके और संवाद के लिए भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबका संवाद करने का अपना एक तरीका होता है, अपनी एक जरिया होता है, वो होता है भाषा।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार जिनके पास भाषा नहीं होती, वहाँ इशारों में भी बातें होती हैं, लेकिन भाषा का अपना एक अलग महत्व है। बहुत सारी भाषाएं हम देखते हैं कि आज जिनका महत्व खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रही हैं, उन्हीं के बारे में बात की जाएगी
2: जी।
1: और आज क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो एक ऐसी शख्सियत की हम बात करेंगे जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो आज वो कौन है?
2: वो है गोदावरी दत्त, जो कि एक चित्रकार है और बहुत ही संघर्षशील महिला है, तो उनके बारे में
1: और चित्रकार की बात आती है ना, तो चित्रकारी में भी बहुत सारी शैलियां होती है ना, अलग अलग तरह की चित्रकारी या रंग बिरंगी पेंटिंग्स हम बनाते हैं, तो कुछ खास शैली इनकी है।
2: बिल्कुल।
1: उसके बारे में अगर आप नाम से वाकिफ हैं गोदावरी दत्त के, तो समझ गए होंगे, नहीं तो बस थोड़ी देर का इंतजार कीजिए जब हम बात करेंगे गोदावरी के बारे में। और मुझे कुछ कहना है तो क्या कहना है?
2: मुझे कुछ मत कहो इस बारे में, क्योंकि हो सकता है ये चीज़ें मेरे लिए ही हो, क्योंकि इसमें लिखा है जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना। मुझे खाना बहुत पसंद है, जैसे कि आप जानते हैं, और सारी सखियां सब सखा सब जानते हैं कि मुझे खाना बहुत पसंद है।
1: तो हम सब जीते हैं, जीने के लिए खाना वाकई में बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक सेहतमंद जीवन यापन करना है, तो उसके लिए खाना क्या होना चाहिए, इस बारे में सोचना ज़रूरी है। लेकिन जब हम खाने के लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो अनाप शनाप या किसी भी समय कुछ भी खाते हैं, और खाने के जो बहुत शौकीन लोग होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, ऐसा लगने लगता है।
2: अलग अलग तरीके की चीज़ों का स्वाद लेना उन्हें अच्छा लगता है। चटोरापन कह सकते हैं।
1: हाँ, चटोरेपन के बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि खाने के लिए अगर जब आप जीना शुरू कर देते हैं

0: तो किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल।
0: तो जीने के लिए खाना या खाने के लिए जीना, इस पर हमारे श्रोताओं के क्या विचार हैं?
1: बिल्कुल, अपने विचार एकदम ईमानदारी से लिखिए आप। हाँ। कि आपको क्या लगता है कि आपको मतलब कभी कभी खाना चाहिए ये चीजें, या फिर हमेशा ही इस तरह से कि आपको हर दूसरे दिन खाना है, ये चीजें आप बताइए।
0: ये सेगमेंट है मुझे कुछ कहना है, तो हमारे श्रोताओं का क्या कहना है इस बारे में वो जरूर कहिए। और कुछ उपयोगी टिप्स हम बताएंगे, जिसमें कपड़ों की उम्र किस तरह बड़ी की जा सकती है इसके बारे में बात होगी। और आज क्योंकि 20 तारीख है, आज है सद्भावना दिवस।
1: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्योंकि देखिए सद्भावना का मतलब क्या होता है, सद और भावना, यानी कि अच्छी भावना, अच्छी भावना से किया हुआ कार्य।
0: 20 अगस्त यानी कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जयंती का ये खास मौका होता है, जिस दिन इस दिन को हम आयोजन करते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि पूरे देश में प्रेम हो, आपसी भाईचारा हो, शांति हो, एकता हो और सौहार्द की भावना जो है वो बनी रहे।
1: बिल्कुल, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि विविधताओं का देश है भारत, यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं रही हैं। यही विविधता हमारी ताकत भी है। और सद्भावना दिवस हमें याद दिलाता है कि हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
0: और इस अवसर पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं वहां पर सद्भावना प्रतिज्ञा भी दिलाई जाती है। जो स्कूल्स हैं, विद्यालय हैं, वहां पर उन संस्थानों में भाषण, रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई तरह की जागरूकता की गतिविधियां भी होती हैं। कुल मिला के सिर्फ यही संदेश दिया जाता है कि देश में एकता बनी रहे, सद्भावना बनी रहे,
1: बिल्कुल शांति बनी रहे, जिससे कि सब एक दूसरे के लिए सोचें, अच्छी भावना से काम करें।
0: और ये खाली एक संदेश देने की बात नहीं है, संदेश देने का दिन नहीं है, लेकिन हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होनी चाहिए ये बातें आरती। और हम सबको मिलकर ये चीज बड़ी दृढ़ता से संकल्प ले लेना चाहिए कि हम सब एक दूसरे के प्रति सम्मान रखेंगे, प्यार रखेंगे, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और इसी तरह तो मिलजुल कर देश एकता और अखंड रहेगा, मजबूत बनेगा।
1: बिल्कुल, और हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जहां पर प्रेम है, सद्भावना है, वहीं पर शांति भी है और प्रगति भी है।
0: तो अब गाने में थोड़ा सा आगे बढ़े, प्रगति करें, एक गीत
1: एक गीत सुनते हैं।

0: तुम्हें ध्यान है जो गांवों में घर होते हैं वहां बहुत सारे चित्र बने होते हैं, तो जब ये मैं गाना सुन रही थी ना, बच के शिकारी शिकार करना, तो जानवरों के या किसी जानवर को उसके साथ खेलते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको पालन पोषण करते हुए, इस तरह के भी भित्ति चित्र बनाए जाते हैं।
1: हाँ, वो घर इतने सुंदर दिखते हैं ना, इतने सुंदर सुंदर रंग बिरंगे रंगों से जब वो उनको चित्र बने हुए होते हैं उसके ऊपर, बहुत सुंदर लगते हैं।
0: और सबसे खास बात ये होती है आरती कि प्राकृतिक जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह का, जैसे बहुत सारी पेंटिंग में हम ऑयल पेंट या इस तरह के पेंट देखते हैं ना कि उनका इस्तेमाल किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन ये जो गाँव में भित्ति चित्र बनाए जाते हैं या जो वहाँ रंग रोगन किया जाता है वो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और आज हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं वो हैं गोदावरी दत्त, जो ऐसे ही रंगों का इस्तेमाल करके अपनी कूची से बड़े खूबसूरत चित्र बनाती हैं, और मधुबनी जो शैली है चित्रकला की उसमें इन्हें महारत हासिल है।
1: बिल्कुल,
0: हमारे श्रोताओं से हमने कहा था कि वो पहचाने की नहीं, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने यह अनुमान लगाया और इनके बारे में बहुत सारे संदेश भी हमें भेजे हैं गोदावरी दत्त के बारे में।
1: बिल्कुल, और जब भी मधुबनी शैली की चित्रकला का जिक्र होता है तो लोगों के जहन में गोदावरी दत्त का नाम शीर्ष पर आता है। और गोदावरी दत्त का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर गांव में 7 नवंबर 1930 को। उस समय मधुबनी पेंटिंग की कोई खास पहचान नहीं थी और ना ही उसको लेकर लोगों में ज्यादा जिज्ञासा ही थी।
0: बिल्कुल, ज्यादा जिज्ञासा नहीं थी, केवल जो शादी ब्याह के मौके होते थे, कोई खास त्योहार है, पर्व है, तो उस अवसर पर जो घर की महिलाएं होती थी बस वही ये पेंटिंग बना दिया करती थी। अलग से कोई कारीगर भी नहीं आते थे, घर की महिलाएं ही बड़ी होशियार हुआ करती थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो सिलसिला था वो चलता रहा। तो इसी तरह से महिलाएं जो घर की थी बड़ी लगन से चीजों को सीख लिया करती थी, अलग से कोई किसी क्लास में जाकर नहीं सीखती थी। अपने घर की जो बड़ी बूढ़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने आगे जो वो जो लोग काम कर रहे थे उन्हीं को देखते देखते वो सीख जाती हैं, और होश संभालते बड़े होते माँ मौसी चाची दादी उनको देख कर घर की जो महिलाएं हैं वो भी चित्र बनाने लगी, और इसी तरह से ये उनकी पाठशाला हुआ करता था।
1: बिल्कुल, संयुक्त परिवार होते थे उस समय, तो सब साथ में होते थे, तो कोई कोई भी सिखा देता था, है ना, तो सब आपस में सीख लेते थे जब ये सब चीजें। तो गोदावरी दत्त जब बहुत ही छोटी थी तब उनके पिता रास बिहारी दास का निधन हो गया, और माँ सुभद्रा देवी मधुबनी पेंटिंग की दक्ष कलाकार थी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी बेटी को इस कला की बारीकियां सिखाई, और जल्द ही गोदावरी की उंगलियां ब्रश पकड़ने में सिद्धहस्त हो गई और वो दीवारों पर चित्र बनाने लगी।
0: और गोदावरी की औपचारिक शिक्षा जो है वो बहुत ही कम हुई, शायद 8वीं 9वीं तक ही हो पाई उनकी शिक्षा, और बहुत छोटी सी उम्र में उनकी शादी भी कर दी गई उपेंद्र दत्त के साथ में। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं रहा। इनके तो जो पति थे उन्होंने इन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर ली, लेकिन उस वक्त तक वो एक बेटे की माँ बन चुकी थी।
1: बिल्कुल, और वो इस संकट की घड़ी से घबराई नहीं, और अपनी माँ से बचपन में सीखी कला को ही उन्होंने अपनी जीविका बनाने का फैसला किया। इस विपरीत परिस्थिति में भी मधुबनी पेंटिंग गोदावरी दत्त के जीवन का सहारा बनी।
0: और जैसे कि हमने कहा ना, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो छोटी उम्र में बचपना भी था उनके अंदर, तो उनके जो वो किस्से बताती हैं, उन्होंने बताया कि एक बार उनके यहाँ बायोस्कोप दिखाने वाला आया और घर के सारे बच्चे बायोस्कोप देखने लगे, तो उनको भी लगा कि भाई बायोस्कोप देखना चाहिए, उन्होंने जिद की। लेकिन उनकी जो सास थी वो बड़ी अच्छी थी, उन्होंने इस बात को अन्यथा नहीं लिया और वहां से सारे पुरुषों को हटाया और भाई अपनी बहू को बायोस्कोप देखना है इसके लिए वो दिखाने ले गई। और बायोस्कोप में उन्होंने देखा कि माता यशोदा गाय को दुह रही हैं और जो कृष्ण छोटे से बालक हैं वो वहाँ बस एक लसिया लिए खड़े हैं दूध पीने के लिए अपना इंतजार करते हुए।
1: और वो बताती हैं, गोदावरी दत्त बताती हैं कि रात भर बायोस्कोप का वो चित्र उनके मन मस्तिष्क में घूमता रहा, उनसे रहा नहीं गया, और लकड़ी के संदूक में से एक कागज निकालकर उस पे उन चित्रों को उन्होंने जो देखा था वो उकेर दिए, फिर उसे छुपाकर वहीं रख दिया। कुछ दिन बाद उनके जो जेठ जी थे वो आए, वो जमीन से जुड़े एक दस्तावेज की तलाश कर रहे थे जो कहीं मिल नहीं रहा था, सब परेशान थे। गोदावरी से पूछा गया तो अचानक उन्हें याद आया, उन्होंने अपने संदूक से निकालकर उन्हें दिखाया तो वो वही कागज था।
0: बिल्कुल, जिस पर उन्होंने वो चित्र बना
1: दिए थे।
0: और गोदावरी बहुत खुशी के साथ और मासूम में इसके साथ इस बात को बताती हैं कि सब लोग जब उस दस्तावेज पर जो उन्होंने चित्रकारी की थी उसे देखकर बहुत खुश हुए।

0: उनकी बहुत प्रशंसा भी की और भूलवश गोदावरी ने उस जो दस्तावेज था उसे कोई सादा कागज समझकर उसके ऊपरी हिस्से पर वो पेंटिंग बना दी थी। और जब भी वो उस घटना को याद करती हैं तो आज भी जो कहते हैं ना कि एक हंसी मुस्कुराहट या प्रसन्नता वो उनके चेहरे पर आ जाती है।
1: तो वो बताती हैं कि उस समय गांव घर में जनेऊ शादी ब्याह और गृह प्रवेश के अवसर पर घर दरवाजों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती थी। उन दिनों परिवारों में शादी ब्याह के अवसर पर दो कोहबर, एक कमलदह, एक दशावतार और बांस का चित्र बनाने की परंपरा थी।
0: तो भाई हमारे कार्यक्रम की परंपरा क्या है, हम बात करते करते गाने भी सुनते हैं, तो सुन ले।
1: हाँ।

0: तो हम बात कर रहे थे गोदावरी दत्त के बारे में। आरती, आपने बताया कि किस तरह के चित्र बनाने की परंपरा थी, क्या चित्र बनाए जाते थे शादी ब्याह के अवसर पर, और ये ऐसा दौर था जब मिथिलांचल में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं को घर की दहलीज लांघने तो बहुत दूर की बात हो गई, पुरुषों से बात करने तक की इजाजत भी नहीं दी जाती थी। उस समय मधुबनी में वस्त्र मंत्रालय का एक कार्यालय खुला, तब ए ग्रेड की पेंटिंग के 10 रुपए और बी ग्रेड की पेंटिंग के 7 रुपए और सी ग्रेड की पेंटिंग के 5 रुपए मिला करते थे। इस तरह से पेंटिंगों को अलग अलग उनके स्तर के हिसाब से बांटा गया था। और गोदावरी जी जो थी वो पेंटिंग बनाने में जुट गई, तो उनके चित्र जो थे वो भी बिकने लगे। एक विदेशी कलाकार ने उनकी पेंटिंग के 25 रुपए दिए, मतलब इतने महंगे दाम में उस वक्त खरीदा, और उसके बाद जगह जगह उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगने लगी। पटना, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, चित्तौड़, रांची, त्रिवेंद्रम, सूरजकुंड, दिल्ली हाट, यानी कहाँ कहाँ तक उनके जो चित्र बनाए गए थे उनकी प्रदर्शनियाँ लगने लगी, और खूब सराहना होती थी, खूब बिक्री भी होती थी उनके चित्रों की।
1: बिल्कुल, और उन्हें पारंपरिक और मिथिकीय विषयों के साथ साथ प्रकृति को सहजता से मधुबनी पेंटिंग में उकेरने में दक्षता हासिल है। वो शुद्ध रूप से भारतीय लोकाचार, संस्कृति और रीति रिवाज की कलाकार हैं, और अपने विषय पौराणिक आख्यानों एवं प्रकृति से प्राप्त करती हैं। वो प्रकृति के जो जुड़े हुए होते हैं उसमें वो अपने जो विषय होते हैं उनको लेती हैं। मधुबनी पेंटिंग की कचनी शैली के अनुसार उनमें धैर्य भी है, जिससे वो अपने चित्रों में उत्कृष्ट पूर्णता और इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। उन गोदावरी दत्त की कला की विशेषता रेखाओं की स्पष्टता में है। रेखाएं एकदम से सही और एक दूसरे से

0: अबद्ध होकर चित्रों में एक तिलिस्म सा पैदा करती हैं। जब बिल्कुल अच्छी तरीके से उन चीजों को उकेरा जाए तो वो कला में जादुई असर पैदा हो जाता है।
1: बिल्कुल सही।
0: बिल्कुल, अपनी सुस्पष्ट सोच और तल्लीनता से रेखाओं में वो मानो प्राण फूंक देती हैं। इनकी एक और विशेषता है कि वो अपने चित्रों में पर्याप्त विश्राम देकर जो प्रत्येक आकृति है उसको उभरने का पूरा मौका देती
1: तभी तो
0: हैं।
1: उन्हें इतनी अलग से पहचान मिली है।
0: बिल्कुल, ये रंगों का प्रयोग कम से कम करती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर कागज या कपड़े पर खाका बनाकर उसके मध्य में बांस की सीख में बंधे कपड़े या धागे से अपेक्षित रंगों को भरने में भी इन्हें महारत हासिल है कि जहां पर बहुत जरूरी होता है वहीं पर यह रंगों का उपयोग करती हैं। और देश विदेश में गोदावरी दत्त के चित्रों की अब तक अनगिनत प्रदर्शनी लग चुकी हैं। इन्होंने अब तक हजारों महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, उनकी सहायता भी की है, उनके कई शिष्यों को राष्ट्रीय सम्मान और पहचान मिल चुकी है। उन्होंने कागज के अलावा रेडीमेड वस्त्र, शॉल और कुशन कवर और साड़ी और जैकेट आदि पर, ये इतनी सारी जो चीजें, इन सब पर उन्होंने मधुबनी पेंटिंग के चित्र को बढ़ावा दिया है, बनाया है।
1: और बहुत सारे सम्मान भी इसके लिए वो पा चुकी हैं। देश विदेश में अलग अलग संस्थानों के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार और राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। और 2019 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल, ये जो मधुबनी पेंटिंग है सचमुच धरोहर है जो उन्होंने बनाकर हमें सहेज कर दी है।
0: बिल्कुल,
1: और अब सुने एक गाना,
0: एक गीत।

0: तो भाई गीत के बाद में अब हम बात करेंगे उन भाषाओं की, उन बोलियों की जो कि अब विलुप्त हो रही हैं। और हमने शुरू में ही बताया था कि हमारा देश है वो विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं, बोलियां, संस्कृति हैं यहाँ की जो सालों से चली आ रही हैं, और ये हमारे देश के समृद्ध इतिहास का परिचय भी करवाती हैं आरती, और जीवंत समाज के बारे में बताती हैं। लेकिन बहुत अफसोस है इस बात का कि इनमें से बहुत सारी भाषाएं अब गायब हो रही हैं, और कुछ गिने चुने लोग हैं जो इन भाषाओं के बारे में जानते हैं या इन्हें बोलते हैं। और बताऊं आरती, तुम्हें जानकर ये हैरानी भी होगी कि 19,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं जो भारत में बोली जाती हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और जैसे हम अभी गीत सुन रहे थे, कितना प्यारा सा गीत था ना, तो ये भी भाषा के जरिए ना हम तक पहुंचा। और हर भाषा का अपना अपना गीत है, संगीत है, पूरी एक समझ लीजिए पूरी सभ्यता ही है इसको लेके चलती है जो
0: कहते तो हैं कि कोस कोस पे पानी बदले तीन कोस पे वाणी।
1: इन जो 19,000 से बताया आपने जो भाषाएं हैं, उनमें से 121 ऐसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें 10,000 से ज्यादा लोग बोलते हैं। और इन 121 भाषाओं में से 22 ऐसी हैं जिन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत भाषा का दर्जा भी दिया गया है, जो है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी भाषा, ये संविधान में सूचीबद्ध है।
0: ये तो तुमने उन भाषाओं के नाम बताए जो सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लेकिन बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जिनको कोई सूचीबद्ध नहीं किया गया, उनकी अपनी कोई लिपि नहीं, कोई शैली नहीं, लेकिन फिर भी उन भाषाओं को सुरक्षित तरीके से रखने की जरूरत है ताकि लोग उनके बारे में जाने। और ये हो सकती है जैसे अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोटी, भोटिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, कोड़वा, काकबुराक, शोरसैनी, सिरकी, निकोबारी, पाली, राजस्थानी, नागपुरी, मुंदारी, मगही, तुलू, ऐसी बहुत सारी भाषाओं की ये भी एक लंबी लिस्ट है।
1: बिल्कुल, हो भाषा भी देखिए कितनी भाषा ऐसी है जो हमने कभी सुनी ही नहीं थी।
0: हाँ,
1: हो भाषा है, कचाची है, कातमपुरी है, कारबी, खासी, कोडवा, कुकबराक,
0: कहते हैं नाम भी शायद हमने सुने नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं कि विलुप्त हो रही हैं ये भाषाएं।
1: ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना पता भी नहीं है। तो अगर कुछ ही बोलने वाले जो बचे हैं, तो अगर इनके हमने इनको संरक्षित नहीं किया तो फिर ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगी।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय संकट में हैं, और ये जो विविधता का संसार है ना, ये छोटा हो रहा है, सिमट रहा है। भारत में भाषाओं के लुप्त होने का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं आरती, कि करीब 4-5 भाषाएं तो ऐसी हैं जो लुप्त हो रही हैं, या कुछ भाषाएं लुप्त हो गई हैं। भाषाओं में खासतौर पर उनकी भाषाओं का जल्दी विलुप्त होने को खतरा है जिनके पास अपनी कोई लिपि नहीं होती है। अगर लिपि से हम उनको संरक्षित करके रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसे कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की कोरो भाषा को बोलने वाले बस अब कुछ 100 लोग ही रह गए हैं। अंडमान द्वीप समूह की भाषा ग्रेट एंडमनीज, निकोबार द्वीप समूह की निकोबारी भाषा भी विलुप्त की ओर बढ़ रही है। सेंटिनलीज जो अंडमान निकोबार के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में बोली जाती है, त्रिपुरा की है साइमार, और हिमाचल प्रदेश की माझी, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में बोलने जाने वाली तोड़ा, इसी तरह निहाली, दारमा, गांगते, सुमी, जाखरिंग, महासुई, ऐसी कई बोलियां हैं जिन्हें संजोकर रखने की कोशिश बहुत जरूरी है।
0: आज जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो जिन भाषाओं के तुम नाम ले रही हो ना आरती, सच में कुछ भाषाओं के नाम तो मैंने भी नहीं सुने हैं, ये जिक्र ही पहली बार हुआ है। और तब आज कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी ये बात आ रही है कि ऐसी भाषाओं के जिन्हें हमें नाम भी नहीं पता, तो ये अगर कहीं विलुप्त हो जाएंगी तो इनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सुनने वाले भी इस बात से बिल्कुल जरूर वाकिफ होंगे या इत्तेफाक रखते होंगे कि इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ वर्ग विशेष होते हैं जिनकी पहचान है, कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं जिनकी पहचान होती है ये। और देखिए हमारे जो श्रोता हैं वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं कि विलुप्त होती भाषण और बोलियां अगर काम हो रहा है तो शब्दों को खोना नहीं है, बल्कि उनके साथ हमारी संस्कृति, लोक कथाएं, गीत परंपराएं, पुरानी पीढ़ियों का अनुभव, ये भी धीरे धीरे खो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें घर में अपनी मातृभाषा बोलनी चाहिए और बच्चों को लिखना पढ़ना भी सिखाना चाहिए, बच्चों को उसके शब्द, उसके लोकगीत, ये सभी चीजें सिखानी चाहिए। भाषा तभी जीवित रहती है जब उसे बोलने वाले गर्व से उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये बहुत सही बात है, कई बार हमें अपनी ही भाषा अगर बोलने में शर्म महसूस होती है या हमें लगता है कि हम सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, तो ये शर्मनाक बात होती है। अपनी भाषा को सम्मान हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा।
1: बिल्कुल, और बोलियों में लोक जीवन की जो अद्भुत संवेदना छुपी होती है ना, वो और कहीं से नहीं।

0: मिल सकती है। किसी क्षेत्र में बोले जाने वाली वहां की मिट्टी की खुशबू, मौसम का मिजाज और रिश्तों की आत्मीयता और लोक मानस की सहजता दिखाई पड़ती है, जो अगर हम भाषाओं को अगर खत्म हो जाएंगे ये, तो उनके साथ में जुड़ी हुई उनकी परंपराएं जो हैं जुड़ी हुई, जो उनकी लोकगीत हैं, लोक संस्कृति है, वो भी सब खो जाएगी। इसे
1: एक
0: बहुत
1: संदेश
0: जरूरी
1: के
0: है।
1: माध्यम से हमारे श्रोता ने बताया है कि भाषाएं और बोलियों को सी डेक के GIST विभाग ने डिजिटल रूप से अच्छे से संजोया है। देश भर की विभिन्न भाषाओं और बोलियों को डिजिटल स्क्रिप्ट्स और डिजिटल टूल्स के जरिए बहुत आसान बनाया जा रहा है। और अब जब मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो ये एक समय हो चला है कि हम एक छोटा सा अंतराल लें।
0: संदेश।

0: आरती, हम बात कर रहे थे विलुप्त होती हुई भाषाओं और बोलियों के बारे में।
1: बिल्कुल, एक संदेश भी है इसी को लेकर। एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि विलुप्त होती जो बोलियां हैं, भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं वो या बोलियां जो आजकल बहुत कम बोली जा रही हैं, हम अपनी मातृभाषा को बहुत कम बोल रहे हैं, ज़्यादातर हम इंग्लिश का ही उपयोग करते हैं या मतलब बाहर की भाषाओं का उपयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम कहना चाहेंगे कि हमें अपनी मातृभाषा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और उसमें पढ़ना लिखना आना चाहिए हमें, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती है उसका पता हमें उसी से पढ़ सकता है।
0: बिल्कुल, जितना महत्व विदेशी भाषाओं का है या अगर हम कहीं बाहर काम के लिए जाते हैं तो सही है कि अंग्रेजी जो भाषा है उसका बहुत हमें लगता है कि ये आनी ज़रूरी है। किसी अन्य देश में जाते हैं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज की तरह हमारे काम आती है, लेकिन जो हमारी मातृभाषाएं हैं या जो हमारी मिट्टी से जुड़ी बोली है उसका अपना अलग महत्व है।
1: और साथ ही हम जहाँ रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, उस जगह की भाषा को अपनाना तो बहुत ज़रूरी है, उस जगह की भाषा का भी हमें ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए।
0: और ऐसे ही कुछ गीत होते हैं भाषाओं से सजे हुए। फिलहाल जो हम गीत सुने कोई लोकगीत नहीं है, लेकिन भाषाओं का बड़ा महत्व होता है, इसी के बारे में बात करेंगे। सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ चंचल, एक हमारी जो श्रोता हैं उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा एक बात लिखी है। वो लिखती हैं कि मतलब उस समय का जब समय था तो गांवों में विवाह समारोह में वृद्ध माताएं जो मीठे सुर में स्थानीय बोली में गीत गाती थीं तो चार चांद लग जाते थे। वो अब कहाँ हैं वो लोग, वो सुरीले गीत अब कहाँ हैं, वो जो हंसा देते थे कभी रुला देते थे, अब DJ का कान फाड़ू संगीत है बस। यानी कि जो भाषाएं जो बोलियाँ होती थी ना, उन बोलियों में जो गीत संगीत होता था
1: हाँ
0: उसका एक अपना ही रस आता था।
1: बिल्कुल, उसमें भले ही कोई वाद्य यंत्र ना बज रहा हो लेकिन जब एक साथ सुर में समूह में महिलाएं या पुरुष उन लोकगीतों को गाते हैं, कई बार चौपाल पर बैठकर या कई बार काम करते हुए महिलाएं गाती हैं उन गीतों को, तो उनका एक रस एक आनंद अलग ही होता है। इसी तरह से अगर हम भोजन की भी बात करें तो कुछ बहुत लोकप्रिय भोजन होते हैं जो किसी प्रांत विशेष में बनाए जाते हैं, किसी जगह की खास पहचान होते हैं, और कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। भोजन हमारे लिए सिर्फ खाना नहीं है, भोजन नहीं है, इस बात का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि खाना हमारी जिंदगी के लिए जरूरत है, जिंदगी का मकसद लेकिन ये नहीं हो सकता। और बात केवल भोजन की नहीं, ये हमारी जीवन शैली की जो भी प्राथमिकताएं हैं उन पर भी विचार करने की बात है। हम बात कर रहे हैं कि मुझे क्या कहना है इस सेगमेंट की, जीने के लिए खाना या फिर खाने के लिए जीना, इस बारे में हम बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जीवन के लिए खाना का मतलब होता है कि भोजन हमारे जीवन को स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय रखने का साधन है। हम खाना खाते हैं ताकि शरीर को पोषण मिले, स्वस्थ रहें, ताकत मिले हमारे शरीर को, और बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकें, सारे काम कर सकें, घूम फिर सकें, अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, जिंदगी को बहुत खुशहाली के साथ जी सकें, सारे काम करें जिसमें अपने सपने, रिश्ते, जिम्मेदारियां उन्हें भी अच्छे से निभा लें, और स्वाद के साथ संतुलन इनका बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यानी खाना जीवन का हिस्सा है लेकिन जीवन का लक्ष्य नहीं
0: लक्ष्य
1: है।
0: नहीं है। और समस्या तब शुरू होती है जब भोजन जो है वो हमारी खुशी, दिनचर्या और जीवन का केंद्र बन जाता है। जब हर समय हम यही सोचते रहते हैं कि आज क्या खाऊं, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, कुछ मीठा हो जाए, और स्वाद के लिए बार बार हम अपनी सेहत, ज़रूरत और संतुलन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसी सोच रखने वाले धीरे धीरे जीवन के लिए खाने के बजाय खाने के लिए जीने लगते हैं, खाने को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा जाता है और हम ये भूल जाते हैं कि हमें कितना और क्या खाना चाहिए। फिर हमारा ध्यान स्वास्थ्य से ज़्यादा स्वाद पर आ जाता है।
1: इसीलिए देखिए हमारे श्रोताओं ने भी बड़े अच्छे संदेश भेजे हैं इस बात पर। इस श्रोता का कहना है कि खाने के लिए जीना और जीने के लिए खाना, इस फर्क में सोच है, ये फर्क का सोच है। जो खाने के लिए जीता है उसके लिए पेट ही भगवान है, और पैसा, समय, ऊर्जा सब स्वाद के पीछे लग जाती है, और सेहत, अनुशासन, लक्ष्य सब पीछे छूट जाते हैं। वहीं जीने के लिए खाने वाला इंसान ईंधन समझता है, खाने को ईंधन समझता है और संतुलित खाता है ताकि शरीर स्वस्थ रहे, दिमाग तेज हो, और वो अपने परिवार, काम, पढ़ाई और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सके। और खाना जिंदगी का साधन है, साध्य नहीं है। अगर साधन ही साध्य बन जाएगा तो हम स्वाद के गुलाम बन जाते हैं, और अगर साधन को सही इस्तेमाल करें तो हम स्वस्थ रहकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बहुत बहुत, बहुत अच्छी बात लिखी है।
0: बहुत सही तरीके से उन्होंने समझाया है कि खाने के लिए जीना नहीं है बल्कि जीने के लिए खाना होता है। तो हमारे एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए। भोजन जीवन की जरूरत और खुशी दोनों है, लेकिन संतुलन बहुत जरूरी है। स्वाद का आनंद लें लेकिन भोजन की अति ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए खाएं। जो आखिर खाना अच्छा वही है जो तन को ताकत और मन को संतोष दे। मतलब अगर कोई चीज़ आपको मन कर रहा है खाने का तो उसको थोड़ी मात्रा में आप ले सकते हैं, थोड़ी मात्रा में लीजिए, जरूरत नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा आप खा लें।
1: बिल्कुल, ये संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, और कार्यक्रम में संतुलन बनाए रखने के लिए हम बीच बीच में बातों के साथ
0: गीत सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब तन्हाई में होते हैं यानी अकेलेपन में होते हैं, तो उस वक्त उन्हें कुछ सोचता नहीं सिर्फ खाने के सिवा। और इस तरह से अकेलेपन की वजह से या कोई काम ना होने की वजह से खा कर भी वो बहुत सारे सेहत पर नुकसान या विपरीत असर ले लेते हैं।
1: हाँ, कई लोग जब बहुत दुखी होते हैं तो भी खाते हैं, हाँ, या बहुत खुश होते हैं तो भी खाते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा सा वजन पे भी असर पड़ता है।
0: तो खाने को अपनी जिंदगी का मकसद ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत सारी सेहत से जुड़ी समस्याएं आपके लिए लेकर आ सकता है। जीने के लिए खाएं, खाने के लिए ना जिए।
1: बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि लगातार ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ जाती है, इससे मोटापा और गंभीर बीमारियां जैसे कि बहुत सारी डायबिटीज़ जैसी बीमारी हो जाती हैं, या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारी हो सकती है, और पेट फूलना, असहज महसूस होना, जी मिचलाना या भारीपन, सुस्ती, थकान रहना, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भूख से थोड़ा कम खाएं, खाने को धीरे धीरे चबाकर खाएं, और फाइबर से भरपूर सब्जियां लें, और रोज हल्का व्यायाम या सैर जरूर करें।
0: हम जो बात कर रहे हैं इसका ये मतलब कतई नहीं आरती कि स्वादिष्ट खाना खाना ही नहीं चाहिए। खाना जीवन की खुशियों में से भी एक हम कह सकते हैं कि है। भोजन केवल पेट भरने का साधन भी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में भोजन का संबंध प्यार, परिवार, उत्सव भावनाएं, इन सब से भी है। परिवार के साथ एक साथ बैठकर खाना खाना, दोस्तों के साथ चाय पीना, त्योहारों पर मिठाई बनती है घरों में तो वो मिठाइयाँ खाना, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, कुछ ये छोटे छोटे सुख होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन इन सुखों को अगर हम अपनी ज़रूरत बनाकर इन्हीं में ही डूबे रहेंगे, नुकसान तब हो जाता है।
1: बिल्कुल, जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो अंतर इतना है कि भोजन का आनंद लें, भोजन को अपनी जिंदगी पर हावी कभी ना होने दें। इसीलिए ये बात जो कही गई है वो बिल्कुल सही सटीक बैठती है कि भोजन का आनंद जरूर लीजिए, लेकिन भोजन को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए।
1: बिल्कुल। और जीवन की सुंदरता या असली संतुलन वो है जिसमें हम स्वास्थ्य अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए स्वाद का आनंद भी लें, और कभी कभार मनपसंद मिठाई खा लेना कोई गलत नहीं है, कभी दोस्तों के साथ बाहर खाना भी गलत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा ऐसे भोजन चुनना ही बेहतर है जो शरीर को पोषण दे और मन को संतुष्टि भी दे।
0: हमारे श्रोता का कहना है कि भोजन जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन स्वास्थ्य उस आनंद को लंबे समय तक बनाए रखने की कुंजी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तरह तरह के व्यंजन, फास्ट फूड और बाहर का खाना हमारी आदतों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। कभी कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन यदि यही स्वाद हमारी सेहत पर हावी हो जाएगा तो परेशानी शुरू हो जाएगी। भोजन का आनंद लें, मगर भोजन को जीवन का केंद्र ना बनाएं। याद रखना है कि खाना जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता भी हैं वो जो कहते हैं कि जिंदगी को जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए जिंदगी नहीं। खाना हमें ऊर्जा देता है, लेकिन असली

0: तो उन छोटी छोटी खुशियों में है जिन्हें हम जीते हैं। अपनों के साथ बैठना, हंसना, बातें करना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। थाली भरने के साथ साथ दिल भी खुशियों से भरा रहे, शायद यही खूबसूरत जिंदगी है। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि कोई कोई खाने के इतने शौकीन होते हैं कि लगता है कि शायद ये खाने के लिए ही जीते हैं। बस जितना सही है उतना ही खाना चाहिए, स्वाद और लोभ में अधिक नहीं खाना चाहिए।
1: और इतना स्वस्थ हमें रहना है कि जीवन का हम आनंद ले सकें, सिर्फ खाने का नहीं लें। और इस बात को अगर हम एक पंक्ति में समझें आरती, तो खाना जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। जिंदगी खाने को बेहतर बनाने में अगर बीत जाएगी तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाएंगी। और अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में इस गीत के साथ।

0: हाँ, तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स की, है ना, जो हमारे काम आ सके। हमारे जो कपड़े हैं बढ़िया बढ़िया जो हम पहनना चाहते हैं, बहुत हमारे पसंद के कपड़े हैं, वो जल्दी खराब ना हो, उसे बचाने के लिए वो कौन
1: बिल्कुल,
0: सी
1: उनकी
0: टिप्स
1: जो
0: हैं?
1: लाइफ है यानी कि उनकी जो जिंदगी है
0: उम्र
1: वो
0: दराज हो।
1: बिल्कुल, अगर हम अपनी सेहत का
0: हाँ
1: ध्यान रखते हैं तो कपड़ों की सेहत का ध्यान रखना
0: बिल्कुल,
1: भी बहुत ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए हम अच्छी खुराक लेते हैं, लेकिन कपड़ों की सेहत के लिए कि उन्हें किस तरह के डिटर्जेंट में धोना चाहिए, तेज़ धूप में सुखाएं कि नहीं सुखाएं, रंग को कैसे सलामत रखें, यही सारी बातें शामिल होती है ना। तो
0: बिल्कुल।
1: ये बड़े अच्छे अच्छे टिप्स हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुँचाए हैं।
0: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि जिन कपड़ों का रंग निकलता है उसे अलग से धोना चाहिए, उन्हें या तो ड्राई क्लीन करवाइए या तुरंत भिगा के धोना चाहिए, बाकी कपड़ों से अलग रखना, और नाजुक कपड़ों को बहुत बार नहीं धोना, और बारिश के बाद कपड़ों को थोड़ी धूप लगाना, और जो कपड़े कभी भी पहनने में नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत जल्दी नहीं आते हैं पहनने में, तो उसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए ताकि वो पहन सके, वरना उसे रखे रखे कपड़े, उसमें भी ऐसा होता है कई बार, कुछ बार जो बारिश के दिन होते हैं, हमने भी निकाले हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ फफूंद जैसी जम जाती है, कपड़े खराब फटने लगते हैं जल्दी,
1: हाँ, ये जो
0: तो
1: आपने कहा ना,
0: बेहतर
1: कई
0: है।
1: बार

0: अलमारी में सहेज कर रख देते कि भाई हमारी बहुत पसंदीदा कपड़े हैं, बहुत खास मौका आने पर पहनेंगे, और कुछ सालों बाद जब निकालते हैं तो हाथ में लेते हैं वो कपड़े से चिर जाता है, फट जाता है, तो वो रखे रखे भी कपड़े खराब होते
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: अगर आपके इतनी पसंद के कपड़े हैं तो आप किसी पसंद के इंसान को या किसी को जरूरतमंद को आप उन कपड़ों को दे दीजिए जिसके वो पहने उनके काम आए।
0: बिल्कुल, एक संदेश में कहा गया है कि कपड़ों की उम्र हमारी देखभाल पर निर्भर करती है। उन्हें सही तरीके से धोना, धूप में बहुत देर तक ना सुखाना, मौसम के हिसाब से साफ करके रखना, और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना, अच्छी तरह से तह करके रखना, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कपड़ों को लंबे समय तक नए जैसा बनाए रखती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे श्रोता जो है वो कहते हैं कि कपड़ों की उम्र भी थोड़ी हमारी देखभाल पर निर्भर करती है, जैसे कि उनको सही तरीके से धोना चाहिए, यानी कि अच्छे किसी साबुन में डिटर्जेंट में धोएं और धूप में बहुत देर तक ना सुखाएं क्योंकि धूप के वजह से उनका रंग उड़ सकता है, और मौसम के हिसाब से उनको साफ रखना चाहिए और पहनने के बाद उसे थोड़ी देर हवा में सुखाना चाहिए, अच्छी तरह से तह करके रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने से कपड़े लंबे समय तक नए के नए बने रहते हैं।
0: तो और भी संदेश पढ़ेंगे, पहले गीत सुन लेते हैं।

0: देखो ना, बहुत अच्छे अच्छे संदेश आ रहे
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: एक हमारे जो साथी वो कहती हैं कि सर्दियों के दिन में जब हम गर्म पानी से कपड़े धोते थे तो मेरी नानी मना करती थी और बोलती थी गर्म पानी से कपड़ा धोने से कपड़े कमजोर हो जाते हैं। यानी सही बात है, उनके रेशे कमजोर हो जाते हैं जिसकी वजह से कपड़े जल्दी खराब भी होते हैं। और साथ ही एक और साथी जो कहती हैं कि हमेशा कपड़ों को उल्टा करके ठंडे पानी से धोना चाहिए और उनको सीधे धूप में ना डालकर शेड में सुखाना चाहिए ताकि कपड़े का रंग हल्का ना हो।
0: एक श्रोता का कहना है कि अच्छे डिटर्जेंट का उपयोग करें, हल्के रंग के कपड़ों को अलग से धोएं, कॉटन और सिल्क के अनुसार ही आयरन का तापमान भी आप बराबर रखिए, अलमारी में नमी ना हो इस बात का भी ध्यान रखें। और अब हम ध्यान रखते हैं कि समय के

0: आज के सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: aquí entre sí.
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा मजबूत करने, मेक इन इंडिया के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमोमोतो में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
3: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
2: श्री कोइजुमी ने भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना के लिए आभार व्यक्त किया। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में जारी है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए त्वरित विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति की वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद से पारित कानून का उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर चल रही है। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पी विश्वनाथन ने कहा है कि राज्य सरकार का विद्यार्थियों और युवाओं के कानूनी अधिकारों को रोकने का कोई इरादा नहीं है। महाविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अनुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये परिपत्र जारी किया गया। उन्होंने बताया कि परिपत्र में कुछ गलतियां थीं जिन्हें सुधारकर इसे दोबारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी महाविद्यालयों को जारी किया गया पिछला आदेश वापस ले लिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। श्री चौहान ने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य तथा उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 35 साल में पहली बार इस पद के लिए मतदान हो रहा है। संसद के सदस्य देश के 23वें राष्ट्रपति को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। इस पद के लिए सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद मैदान में हैं। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। सरकार ने उस लेख का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार के 3 घंटे के भीतर सामग्री हटाने के अनिवार्य नियम का पालन करने के लिए मेटा ने सामग्री अवरोधन को स्वचालित कर दिया है और दिल्ली के विरोध प्रदर्शनों के दौरान सामग्री अवरोधन में भारी वृद्धि हुई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस लेख को भ्रामक बताया है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने जापान की रेन एवानागा और नाकाशिनी की जोड़ी को लगातार गेम में 21-16, 21-12 से हराया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं चिड़ावत से बोल रहा हूँ, खंजर डेरे से, देवास जिले से, और संतोष जी हड़ा नाम है मेरा।
0: जी संतोष जी, बहुत अच्छा लगा आपने फोन लगाया। तो बताइए अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: हमारा गांव एक बम्बई हसलन रोड पे है, जेबी रोड पे, और बड़ा अच्छा गांव है, सुंदर सुखी है।
0: तो देवास जो आपका जिला है, वहाँ की क्या क्या खास बातें हैं वो बताइए हमको।
1: हमारे इधर दाल बाटी का बड़ा शौकीन एरिया है ये।
0: अच्छा, और मिठाई में क्या वहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: काजू कतली चलती है, बर्फी चलती है, माव बाटी चलती है।
0: तो आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मिठाई मोतीचूर का लड्डू और काजू कतली या बर्फी बहुत टेस्टी देती है।
0: क्या बात है, और वहाँ के बारे में बताइए कि कैसा मौसम है इस समय।
1: जी अभी हमारे इधर से 5-7 दिन से पानी नहीं गिरा है, इसलिए हमारी फसल को बहुत अच्छी राहत मिली है और हमने दवाई दारू भी डाल दी है।
0: संतोष जी, आपने कौन सी फसल बोई है?
1: सोयाबीन की फसल लगाते हैं हम।
0: सोयाबीन तो बहुत फायदेमंद है, बहुत प्रोटीन से भरी हुई चीज है ये तो।
1: बिल्कुल, जो कुदरती देन से आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो 4 साल से अभी 1 बीघा क्विंटल ही होती है। जो कुदरती देन से अच्छी आ जाए, 3 से 4 बीघा का एक बीघे में निकाल लेते हैं हम।
0: क्या बात है, और जब आप खेती करते हैं तो फसल के लिए पानी का क्या प्रबंध करते हैं? आप कैसे पानी डालते हैं खेतों में?
1: जैसे बरसात में तो ऊपर वाला ही देता है, और जैसे गेहूं चना लगाते हैं तो फिर ट्यूबवेल बो रहे, कुआ भी है,
0: तो उससे मेड़ के जरिए नाली बनाते हैं जो आप लोग उसके जरिए पानी लाते हैं।
1: आजकल तो मोटर से चलता है ना।
0: बहुत अच्छी बात है, और आप अपने खेत में कौन सी खाद इस्तेमाल करते हैं?
1: यूरिया और सुपर एमपी डीएमपी।
0: अच्छा, जैविक खाद या रासायनिक खाद यानी कि?
1: जी जी।
0: अच्छा ये बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी हमने सावन चल रहा है तो गीतों में ढालूंगा, सावन को आने दो, उस फिल्म का गाना।
0: बहुत ही प्यारी सी पसंद है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें फोन किया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला नगमा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं सुकीर्ति मोहित पांडे, भारत की जीवन रेखा, श्रद्धा और आस्था का केंद्र, माँ रेवा की नगरी नर्मदापुरम से बोल रही हूँ।
0: सुकीर्ति जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने फोन लगाया, तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं शिक्षक हूँ।
0: तो आप क्या विषय पढ़ाती हैं?
1: प्री प्राइमरी विद्यार्थियों को मैं पढ़ाती हूँ।
0: सारे विषय पढ़ाती होंगी आप?
1: जी।
0: तो कितने साल हो गए आपको पढ़ाते हुए?
1: 2003 से अभी तक पढ़ाते आ रही हूँ।
0: क्या बात है। तो ये आपने जो प्रोफेशन चुना है, ये बचपन से ही आपका शौक था? जब आपको लगा कि मुझे कोई क्षेत्र चुनना है, जॉब करनी है, तभी से आपने सोच लिया था कि आप शिक्षक बनना चाहती हैं?
1: इसका श्रेय मैं मेरी पैतृक विरासत को दूंगी कि मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो उनके साथ जो एक गुड्डी गुड़िया के खेल जैसे खेला जाता है, वैसे मैं भी शिक्षक बनकर नाटक करती थी, लेकिन अब प्रतीत होता है कि वह नाटक नहीं है, वह वास्तविकता थी। जी,
0: क्या बात है। यानी कि परिवार से ही, बचपन से ही आपकी नींव पड़ गई थी, बहुत अच्छी बात है ये। तो और बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: अभी ये श्रावण मास चल रहा है, शिव और पार्वती के मिलन का समय चल रहा है, तो ऐसे ही हम भी मानव हैं, हमें भी शिव से और जीव का मिलन होना है, तो है तो फिल्म का गाना, लेकिन गाने में सार्थकता है। चांदनी फिल्म का गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत आपने चुना है। तो सुकीर्ति जी, आपको आज सुनवाते हैं हेलो फरमाइश में आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ, वी पूनम नायडू।
0: और बताइए कैसी हैं आप?
1: बस जम के इधर पूरे सबाब पे बारिश हो रही है, सावन बरस रही है मैडम जी, और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं और अपने अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त भी हैं सभी लोग।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश के रिमझिम फुहारे पड़ रही हैं, तो आपको भीगना पसंद है इस मौसम में?
1: जी लेकिन घर में डांट भी पड़ती है मैडम जी, भीगती तो हूँ मैं।
0: डांट पड़ती तो बड़ा मजा आता है कि कैसा लगता है?
1: बचपन की यादें जो है मैडम जी वो ताजा हो जाती है और मजा आता है। उसका बुरा नहीं मानती हूँ मैडम जी, क्योंकि घर के प्यार से ही डांटते हैं, जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है ना।
0: हाँ बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कही। और बताइए अपने बारे में कि क्या करती हैं आप?
1: शिक्षिका हूँ मैडम जी, प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों की, और प्लस हम लोग का यहाँ पे फार्म हाउस है, तो यहाँ पे ना 12 महीना कुछ ना कुछ सब्जी वाली फसल लगाते हैं, तो वो काम में भी सहयोग करती हूँ भाइयों के साथ।
0: क्या बात है, यानी आपको खेती करना पसंद है।
1: जी
0: आपने क्या क्या लगा रखा है अपने खेत में?
1: अभी सब्जी लगा रखी है मैडम जी, ये सेमी बोलते हैं, आपको पता है सेमी है, बरबट्टी है, करेले हैं।
0: जी, और क्या शौक है आपके?
1: मुझे तो बचपन से गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है मैडम जी, और हमारे घर में सभी रेडियो के शौकीन हैं, मेरे नाना नानी भैया भाभी और जितने भी है, पहले से चला आ रहा है लगभग सास पर सास से, और गाने बजाते हुए सभी काम करते हैं मैडम जी, और वो काम बढ़िया हो जाता है हम लोग का, और मूड भी फ्रेश रहता है सभी का।
0: अच्छा ये बताइए कि आपके जगदलपुर की क्या खास बातें हैं?
1: बस्तर एक बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है मैडम जी, और बहुत ही देखने के काबिल है, जो भी आप देखेंगे यहाँ पर सब कुदरती सुंदरता इसमें बसी हुई है, जैसे चित्रकूट है और कुटुम्बसर है मैडम जी, और कैलाश गुफा है, और दंतेश्वरी का मंदिर प्रसिद्ध है, और दशहरा जो पर्व होता है अभी स्टार्ट हो गया है उसका, 75 दिन का होता है मैडम जी, जो खास प्रोग्राम है वो 15 दिन का होता है, अभी अगले महीना अक्टूबर में होगा मैडम जी ये।
0: क्या बात है, कौन सी नदी बहती है वहाँ पर?
1: इंद्रावती नदी बहती है मैडम जी।
0: क्या बात है, और बताइए कि आज आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम है साजन का घर, उसमें एक गीत है मैडम जी, थोड़ा मैं गुनगुना के बता दूं क्या?
0: बताइए बिल्कुल।
1: सावन आ

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं देवेंद्र सिंह राजपूत बोल रहा हूँ, रहेली जिला सागर मध्य प्रदेश से।
0: देवेंद्र जी, आज आपने हेलो फरमाइश में कॉल लगाई तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत खुशी हो रही है जी। बहुत देर से ट्राई कर रहे थे, हर हफ्ते करते हैं, लेकिन आज पहली बार नंबर लगा, पहली बार बात हो रही हमारी विद भारती में।
0: चलिए, आपका फोन लगा और पहली बार आपकी मेरे से बात हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं?
1: जी, मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है छोटी सी, और कृषि का व्यवसाय भी है।
0: अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक की शॉप है तो उसमें आप क्या करते हैं?
1: जी, शुरुआत तो मेरी रेडियो से हुई थी। जब रेडियो आया था तब हमारे पास रेडियो, तो रेडियो रिपेयरिंग से शुरुआत की थी मैंने। आजकल अब कंप्यूटर, LED TV वगैरह सब कुछ रिपेयर करता हूँ, सेल भी करता हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आप रेडियो के इंजीनियर हैं?
1: जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो के इंजीनियर, और इस रेडियो ही के बदौलत है विविध भारती से भी जुड़े मेरा शौक है जी।
0: तो विविध भारती के प्रोग्राम आपको कौन कौन से अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती के हम सुबह 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, आपकी फरमाइश, आज के फनकार, छाया गीत, ये सब ही हमारे फेवरेट प्रोग्राम है।
0: अच्छा, ये बताइए, आपने बताया ना कि आप खेती भी करते हैं, तो
1: जी,
0: आजकल आपने क्या खेत में बो रखा है?
1: इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है जी, तो इसमें मक्का बोई है हमने पूरे खेत।
0: अच्छा, तो जो ये खरीफ का सीजन है ये कब से कब तक चलता है?
1: ये लगभग 15 जून जब मानसून आता है ना, तब

0: से लेके 15 अक्टूबर तक का ये सीजन होता है खरीफ का।
1: अच्छा, तो इसमें आप कौन कौन सी फसलें बोते हैं?
0: इसमें हम लोग मक्का है, सोयाबीन है, जौ है, तिल है, उड़द है, मूंग है, इस वगैरह ये सब की फसलें उगाई जाती है खरीफ के सीजन में
1: जी।
0: हम लोगों के क्षेत्र में धान धान थोड़ा कम होता है हम लोगों के यहाँ।
1: और इसके बाद जो सीजन आएगा,
0: रबी फसल का सीजन होता है वो 15 अक्टूबर से 15 मार्च तक मान लीजिए उसका ये पीरियड रहता है।
1: और तो उसमें कौन कौन सी फसल बोते हैं फिर आप?
0: इसमें गेहूं है, चना है, मूंग है, मसूर है, मटर वगैरह, ये गन्ना नन्ना ये सब बोए जाते हैं उसमें।
1: तो ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मैं दस्तक फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, मदन मोहन जी की आवाज में हो या मतलब लता जी की आवाज में, माई री मैं कासे कहूँ तीर अपने जिया की।
1: तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: जी मैं श्रीनगर से बात कर रहा हूँ, साहिल डार।
0: साहिल जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया और बड़ी ही खूबसूरत जगह से आप फोन कर रहे हैं। अपने बारे में और भी कुछ बताइए हमें।
1: जी मैं कश्मीरी आर्ट के साथ कर रहा हूँ मैडम, जो कांच शॉल होते हैं मैं उसी के साथ कर उसी का बिजनेस करता हूँ मैं।
0: और इसके बारे में और बारीकी से बताइए, जानकारी दीजिए हमें, जिससे हमारे सभी साथियों को भी मिल सके।
1: ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसमें पहले धागे लाने पड़ते हैं, फिर उनको कलर करना पड़ता है, फिर उसको ये बुनाई के लिए ठीक करना होता है, तो फिर उसको बुनते हैं।
0: ये धागे कैसे होते हैं, रेशमी या सूती?
1: ये सूती होते हैं मैडम।
0: अच्छा, और इनसे आप क्या क्या चीजें बनाते हैं?
1: इसमें डिजाइन आते हैं मैडम।
0: अच्छा,
1: डिजाइन होते हैं तो फिर उसी की उसी जो डिजाइन होगा
0: जी
1: वैसा ही फिर उसका ये नक्शा बनेगा।
0: उस नक्शे से आप कढ़ाई करते हैं, सांचे में करके करते हैं क्या?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो क्या क्या चीज बन जाती है इससे?
1: शॉल बनते हैं मैडम।
0: बड़े चटक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: और बताइए,
1: श्रीनगर और कश्मीर कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ के जो पहाड़ वो कितने मानो के आसमान से बातें करते हुए नजर आते हैं, और जीली डल का नजारा तो शाम के वक्त

0: पर बहुत ही खूबसूरत लगता है कि उनमें जो लाइटें होती है
1: जी,
0: जब पूरा अंधेरा होता है तो लोग चलते हैं अपनी गाड़ियों में तो खूब नजारा लेते हैं उन लाइटों का, जो झील डल में जो हाउस बोट होते हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो उनमें लाइटें होती है तो उनका खूब नजारा लिया जाता है शाम को।
1: क्या बात है। और बताइए श्रीनगर में आजकल किस तरह की खेती की जा रही है, फल कौन से हो रहे हैं इस समय?
0: जी इस वक्त एक तो है सेबों का सीजन और एक धान का सीजन अब आने वाला है, अगले महीने से उसकी कटाई शुरू होगी।
1: अच्छा, तो रेडियो सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है?
0: रेडियो सुनते शुरू मैंने किया है 2002 में मैडम।
1: तो आपको किस तरह के गाने पसंद आते हैं?
0: जी सभी गाने अच्छे होते हैं, लेकिन आप इंसान को आप कहते हैं ना कि पसंद अपनी अपनी,
1: जी
0: अपना अपना।
1: बिल्कुल, तो बताइए हेलो फरमाइश में आज आप कौन से गीत की फरमाइश करने वाले हैं?
0: जी फिल्म आई है एक दूजे के लिए, बहुत ही प्यारा नगमा है, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
1: क्या बात है,
0: प्यार तेरी पहली नजर को सलाम।
1: तो आपको सुनवाते हैं ये प्यारा।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं?
1: राम कटारिया जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से मैं राम नरेश संजर बोल रहा हूं मैम।
0: राम नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, अपने बारे में कुछ हमें बताइए।
1: मैं एक कृषक हूँ, खेती बाड़ी का काम करता हूँ और इन दिनों हमारे क्षेत्र में जो खेतों में है सोयाबीन की फसल लगाई गई है और ये अगले माह तक ये तैयार हो जाएगी।
0: जी अच्छा, कितनी लगभग हो जाती होगी आपके खेत में सोयाबीन की फसल?
1: देखिए, मध्य प्रदेश की राज्य फसल जो है वो सोयाबीन ही है। मध्य प्रदेश में अधिकाधिक मात्रा में सोयाबीन ही लगाई जाती है। खरीफ के मौसम में जो बारिश में जो फसलें लगाई जाती है ज्यादा मात्रा में पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन ज्यादा लगाई जाती है।
0: अच्छा, जो सोयाबीन की जो खेती होती है उसकी मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए?
1: किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, भूरी मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, कंक्रीट जगह हो, पथरीली

0: क्या बात है, यानी गर्मी भी होती तो बहुत गर्मी होती है, सर्दी भी तो सर्दी भी बहुत पड़ेगी। और बारिश कैसी रहती है वहाँ पे?
1: बारिश बहुत अच्छी होती है हर वर्ष, बढ़िया 800 मिलीमीटर, 900 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बारिश
0: जी
1: हो जाती है हमारे यहाँ।
0: बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी राम नरेश जी। ये बताइए कि जो फसल की सुरक्षा के बारे में आप पशु पक्षियों से कैसे उनका ध्यान रखते हैं कि आपकी फसल खेत में लगी है वो सुरक्षित रहे?
1: देखिए उसमें तो ऐसा है कि बहुत सारे हमारे जो किसान भाई हैं वो जो कांटे वाली
0: जी
1: तार रहती है उसका प्रबंधन करते हैं, खेत के चारों तरफ जाली भी लगा देते हैं 4 फीट 5 फीट ऊंची।
0: हाँ सही बात है, इस तरह की चीजें तो खेती करते समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो बताइए आज आपको हम हेलो फरमाइश प्रोग्राम में कौन सा गीत सुनाएं?
1: आज के इस कार्यक्रम में आंटी नंबर वन फिल्म का गीत है, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, कुछ कुछ तो मेरे दिल में हो रहा है, ये गाने के बोल है।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश
1: सर, मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: तनुश्री सुर्वे जी, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया, कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत प्रयास करने के बाद लगाए पर

0: ना, तो आज बहुत बहुत बहुत खुशी हो रही है।
1: देखिए, जब प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है ना, तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो तनुश्री जी बताइए, आप क्या करती हैं?
0: मैम मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
1: क्या बात है, क्या उम्र है आपकी?
0: मैम 19 साल की हूँ।
1: शास्त्रीय संगीत सीख

0: ने निकाल लेती हैं।
1: मैम गाने तो नहीं, पर प्राग मतलब मैं एग्जाम देकर सीख रही हूँ ना, रागों की संपूर्ण माहिती आती है उसमें, फिर रागों का मतलब बंदिश, छोटा ख्याल, डुमरी, ऐसा आता है ना सब, वो सीख
0: जी।
1: रही हूँ अभी मैं।
0: क्या बात है, बहुत सारी आप रागे सीख रही हैं, तो कुछ सुना सकती हैं आप हमें गा के?
1: जी मैम, एक बिहार राग के हुए एक छोटा सा थाई और उसमें दो तान गुनगुनाना चाहती हूँ।
0: बिल्कुल, गुनगुनाइए आप।
1: जनाना जना मोरी बाजे संजनिया निसा गम पम।

तनुषी जी से बहुत सारी प्यारी सी बातें चल रही थी और वो जो शास्त्रीय संगीत का एक प्यारा सा गीत गुनगुना रही थी, लेकिन अचानक ही उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब हम उनको विविध भारती की तरफ से अपनी पसंद का ये गीत सुनाते हैं, लुटेरा फिल्म का सवार लूं।

0: हेलो फरमाइश, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताइए।
1: भोपाल विश्वकर्मा, जिला गुना से।
0: बहुत अच्छा लगा आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आप क्या करते हैं।
1: खेती करते हैं, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: देखिए, खेती करना जो कहते हैं ना, वो अपने आप में

0: बहुत बड़ा काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो जो अनाज होता है ना वो हम तक पहुंचता है, जब आप लोग खेती करते हैं ना तो पूरी दुनिया में सब जगह अनाज जाता है, तो सबका पेट भरता है कहना चाहिए। तो आप बहुत ही नेक और पुण्य का काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं। तो खेत में आपने क्या बोया?
1: मक्का की फसल लगा रखी और आपके कार्यक्रम वो विविध भारती चलता रहता है हमारा
0: जी। तो तकरीबन कितना मक्का निकल आता है?
1: ये निकलता है 1 बीघा में निकल जाता है 4-5 क्विंटल का।
0: तो इसको आप बाजार में बेच देते होंगे जाकर के फिर, है ना? कुछ अपने लिए रख लेते होंगे?
1: गुना में बेचते हैं, मंडी पास में।
0: अच्छा अच्छा और आपने कहा कि आप रेडियो सुनते हैं
1: भारती कार्यक्रम, हेलो फरमाइश, सखी सहेली, और वो सेतनामा 4 बजे आता है, तिरवेणी, चित्र लोग सभी सुनते हैं, वो चलता रहता है हमारा।
0: क्या बात है। और बताइए अपने गुना के बारे में बताइए कि वहाँ पर क्या क्या खास चीजें हैं, कुछ घूमने की जगह है, वहाँ पर नदी कौन सी है?
1: नदी भी है और जो धार्मिक स्थल भी है, टेकरी सरकार भी है,
0: हनुमान जी का टेकरी का मंदिर है जो वो, और एक 20 भुजा देवी है शायद ना वहाँ पर।
1: हाँ है 20 भुजा देवी,
0: बहुत ऊंचाई पर है वो, बहुत खूबसूरत सा मंदिर है उनका।
1: बहुत ऊंचाई पर है
0: जी। और गुना में क्या क्या चीजें मिलती हैं खाने पीने की?
1: सभी मिलते हैं कि खाने पीने की सब्जी वाली, वो तो जिला है अपना गुना, तो
0: बड़ा खूबसूरत सा गुना है। तो बड़ा अच्छा लगा गोपाल जी आपसे बात करके। तो हेलो फरमाइश में आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमेरा प्यार की फिल्म का।
0: तो गोपाल जी लेते हैं आपसे अनुमति और सुनाते हैं आपको आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत हेलो फरमाइश में। चलिए मिलकर सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, बताइए आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे
1: जी।
0: हैं?
1: हम धेमाजी असम से बोल रहा है बिमल बसुमतारी मैम।
0: विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपने हेलो फरमाइश में फोन लगाया। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी रेडियो से बहुत जुड़ा रहता है, विविध
0: जी,
1: भारती सुन के रेडियो सारा सुन के बहुत अच्छा लगता है मैम।
0: आप हमारे विविध भारती रेडियो के नियमित श्रोता हैं।
1: जी मैं तो, मेरा दुकान है, मैं सिलाई का काम करता हूँ, दुकान में रह के रोज

0: गाना का साथ जुड़ा रहता हूँ, रेडियो का साथ बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: अच्छा, तो आप क्या सिलते हैं
0: जी? मैम हम सारा कपड़ा सिलाई करते हैं, जैसे हो गया जेंट्स हो गया लेडीज हो गया, सारा सिलाई करता हूँ मैम।
1: यानी कि आप जेंट्स और लेडीज दोनों के कपड़े सिलते हैं। तो ये जो टेलरिंग की शॉप है, इसमें आपको कितना समय हो गया है काम करते हुए, कितने साल पुरानी है ये आपकी दुकान?
0: जी मैम हम 1200 से आज तक कर रहे हैं दुकान में मैम।
1: अच्छा, तो कहाँ से सीखी आपने सिलाई?
0: जी मैम हम सिलाई गुवाहाटी में सीखा था।
1: तो बाकायदा कोई कोर्स किया था, सर्टिफिकेट वाला किया था, या किसी के द्वारा सीखी आपने सिलाई?
0: जी उधर दुकान एक था और दुकान से हम सीखा हुआ है, फिर अभी हम जो आया है मेरा बस्ती में, मेरा इधर ही दुकान खोल के बैठा हुआ है मैम।
1: तो आप कटिंग करते हैं या आप सिलाई भी करते हैं, दोनों चीज करते हैं, या कटिंग आप करते हैं, सिलाई कोई और करता है?
0: हम खुद सिलाई भी करता है, खुद कटिंग करता हूँ मैम।
1: अच्छा, तो पूरी शॉप पर आप अकेले काम करते हैं, आपने कोई साथ में नहीं रखा काम करने वाला?
0: जी मैम मैं खुद करता हूँ, मेरा छोटा मोटा दुकान है, इसे चल रहा है मैम।
1: अरे वाह, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं आप?
0: जी मैम हम दुकान का सर रह के फिर खेती बाड़ी भी कर लेता हूँ घर में।
1: अच्छा, तो खेती में कौन सी फसल उगाई है?
0: खेती में तो हम लोग चावल का खेती होता है ना, धान का, वही करता हूँ मैम, उसका बाद दुकान से भी जुड़ा रहता हूँ।
1: अच्छी बात है। और असम के बारे में बताइए, बहुत खूबसूरत सा शहर है वो।
0: असम का बारे में जैसे हो गया हम लोग गुवाहाटी में है कामाख्या टेम्पल, वो भी ठीक है, कहीं कहीं बहुत है मैम। हम लोग का जो हो गया डिब्रूगढ़ हो गया, ये भी अच्छा है,
1: बड़ा खूबसूरत है, हरा भरा सा शहर है, बहुत सारे पूजा के धार्मिक स्थल भी हैं वहाँ पर।
0: बहुत अच्छा लगता है रेडियो से, जैसे बहुत दिन से जुड़ा हुआ है रेडियो से और विविध बातें भी सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता है।
1: कौन कौन से और प्रोग्राम सुनते हैं आप?
0: जी मैम मैं तो बहुत चैनल सुनता हूँ, जैसे हो गया विविध भारती हो गया, और हम लोग का असम का है डिब्रूगढ़ है, जोरहाट है, ईटानगर है, लखनऊ है।
1: बिल्कुल,
0: बहुत बहुत चैनल है मैम, सबसे जुड़े रहते हैं।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत हेलो फरमाइश में सुनना चाहते हैं?
0: जी मैम हम अनारी फिल्म का सुनना चाहता है, गीत का बोल है रोना सा है रोना पाए।
1: तो चलिए आपको हेलो फरमाइश में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: तो दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। आपको बता दें किन दो नंबर्स पर आपको फोन लगाना है। पहला नंबर है, मुंबई का एसटीडी कोड नोट कीजिए 022। फोन नंबर है 2867-0288, यानी 02228670288। इसका दूसरा नंबर है 4002466-2, यानी 02240024662। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में जिन श्रोताओं की फरमाइशें पूरी की गई हैं, उन श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि वे हमें 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे अन्य श्रोता भी जुड़ सके। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आपने तय किया मंजरी वर्मा के साथ। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग दिया सुशीला वेंगुरलेकर ने, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपनी दोस्त मंजरी वर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। इस वक्त हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम के 6 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपका दोस्त और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आरंभ करता हूं आज की दूसरी सभा। श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आरंभ करेंगे हम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के साथ, जिसमें सबसे पहले आप सुन पाएंगे मार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे रूथी मार और उनके साथी। समय रहेगा 6:05। 6:25 पर आप आनंद लेंगे जेमी कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ लोकगीत अचाले जान में और उनके साथियों की आवाज़ों में।

6:45 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्यार आंचलिक बातोरी। 7 बजे हम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए आरंभ करेंगे डिमासा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार रहेंगे प्रदीप हाफलोंगबार और उनके साथी।

श्रोताओं, हम आपको दे रहे थे जानकारी आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 7:20 पर आप सुनेंगे कार्बी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत जिसके गायक कलाकार रहेंगे मेलिना क्रोपी और उनके साथी।

कुकी कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:40 पर। इस कार्यक्रम के तहत आप आनंद ले पाएंगे कुछ आधुनिक गीतों का, जिसके गायक कलाकार रहेंगे सेजाथांग हावलाई और उनके साथी। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा रात के 8:00। 8:30 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गीत।

8:45 पर समय रहेगा समाचार संध्या का, जो कि रिले के जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात के 9 बजे आप सुन पाएंगे मिनट बाय मित्रास, और आज के हमारे दूसरी सभा का आखिरी कार्यक्रम रहेगा चित्रगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की हमारे दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के तहत मार कार्यक्रम, और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे रूथी मार और उनके साथी।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ यही पे समाप्त होता है मार गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे रुथि मार और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं जेमी कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ लोकगीत। गायक कलाकार रहेंगे अचाले जान में और उनके साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्यार आंचलिक बातोरी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए आनंद लेते हैं डिमासा कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार रहेंगे प्रदीप हाफलोंगवार और उनके साथी।

इन्हीं सुरीले गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है डिमासा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे प्रदीप हाफलोंगबार और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का, मेलिना क्रोपी और उनके साथियों की आवाज़ों में।

इन्हीं मधुर गीतों के साथ यहीं पे हम समाप्त करते हैं कार्बी गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे मेलिना क्रोपी और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं कुकी कार्यक्रम का

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं कुकी की गीतों का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के तहत आपने सुना कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे सेई जाथांग हावलाई और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं किसानवाणी कार्यक्रम का।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: এতিয়া আগবঢ়াইছো বিভিন্ন জিলাৰ কৃষকসকলৰ বাবে যুগুতোৱা বতৰৰ বতৰা আৰু কৃষি পৰামৰ্শ। গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ, বাক্সা, চিৰাং আৰু দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছা জিলাৰ কৃষকসকলৰ বাবে যুগুতোৱা কৃষি পৰামৰ্শ হৈছে। যিসকল খেতিয়কে আগতীয়াকৈ মূলা খেতি কৰিব সেই খেতিয়কসকলে মূলাৰ গুটি সিঁচিব পাৰে, কাৰণ অহা কেইদিনত প্ৰবল বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। ৰহৰ খেতিৰ বাবে মাটি প্ৰস্তুত কৰা কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিব পাৰে। ধেমাজি, লখিমপুৰ, দৰং, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি আৰু বিশ্বনাথ জিলাৰ কৃষকসকলৰ বাবে আগবঢ়োৱা পৰামৰ্শ হৈছে, কৃষকসকলে আদা আৰু

श्रोताओं, आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। अब आइए आरंभ करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है, ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश की अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
2: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता,

0: विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित थे। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा 3 स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं 3 स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आमतौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर बनाना है।
3: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में 2 तरीके अपनाए गए हैं। मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी

0: कार मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नरस्टोन बन गई है।
0: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
2: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड जिस चीज के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने के टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन ICT है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलेबाल्डो डे ला एस्प्रिला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास

0: आज के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष, महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी क्षेत्री, आकाशवाणी समाचार, कर्शियंग।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
1: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
3: गुड इवनिंग।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
5: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं मिनट्स बाय मित्रास।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मिनिट बाय मित्रास।
1: आपकी गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे, सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं चित्रगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में आज हमने लिया है कुछ चुनिंदे गाने सिर्फ आपके लिए। आइए इस पहले गाने को सुनते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म सुल्तान से, और इसे अपना आवाज़ दिया है पापोन ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म हे बेबी से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

श्रोताओं, आइए अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जो है फिल्म बजरंगी भाईजान से, और इसे आवाज़ दिया है अतीफ असलम ने।

श्रोताओं, आइए बढ़ते हैं इस आखिरी गीत की ओर, जो है फिल्म वीर जारा से, और इसे अपनी आवाजें दी हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है चित्रगीत कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इस सभा को यहीं पे विराम देने का। कल सुबह की पहली सभा में सुबह 6 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभरात्रि, जय हिंद।